संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर 2026 प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त आशी राठौर। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि

0: मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशगान सुना। वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: ज्योतिकार रॉय के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत निरगुड़े का ये आलेख। वाचक हैं डॉक्टर अरविंद सोनी। विषय है जंगल।
1: कल्पना कीजिए कि यदि जंगल नहीं होता तो मनुष्य का क्या होता, इसकी चिंता भगवान को भी रही है। इसका साक्ष्य एक गौंड मिथ कथा में मिलता है। कथा में कहा गया है कि भगवान ने धरती का निर्माण कर दिया था। धीरे धीरे सृष्टि का आरंभ हो गया था। एक बार महादेव के मन में जंगल रचने की इच्छा जागी। उन्होंने सृष्टि के आरंभ में अपने शरीर के मैल से एक बढ़ई बनाया। उसको काम करने के लिए औजार भी दे दिए। एक दिन बढ़ई ने कहा, भगवन, मुझे आपने गढ़ दिया है, औजार भी दे दिए हैं, लेकिन वो चीज तो है ही नहीं जिस पर मैं अपने औजार चलाऊं। बढ़ई की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और अपनी जटा से 3 केश निकालकर धरती पर फेंके। इन केशों से धरती पर कस्सी, सागौन और आम के 3 पेड़ उत्पन्न हुए। बढ़ई ने सागौन के पेड़ से एक हल तैयार कर महादेव को भेंट किया। साथ ही ये भी कहा कि आपने केवल 3 पेड़ बनाए हैं, उनकी लकड़ी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा परिवार तो भूखा मरने लगेगा। महादेव ने मुट्ठी में थोड़ी सी राख उठाई, उसे मंत्रित किया और उसे बढ़ई को दे दिया। उन्होंने उससे कहा, जाओ ये राख 3 पेड़ों पर छिड़क दो। बढ़ई ने राख को ले जाकर 3 पेड़ों पर छिड़क दिया। राख पड़ते ही पेड़ फूल उठे, उनसे फूल, फल और बीज उत्पन्न हुए और इन्हीं बीजों से विशाल वनों को पृथ्वी पर आकार मिला। तब से हर पेड़ फलने फूलने लगा और वनस्पतियों का संसार बना। कथा का सारांश कहता है कि पेड़ पौधों को फलने फूलने का महादेव का यदि वरदान नहीं मिला होता तो आज पेड़ पौधों की निरंतरता नहीं रहती। एक बीज एक पेड़ पैदा करता है और उसी पेड़ का फल हजारों बीजों को जन्म देकर अपनी प्रजाति का विस्तार करता है और उसे हर समय में बचाए रखता है। ये उसका रित है। प्रकृति और वनस्पति इसी रित के चक्र में बंधी होती है। ये चक्र ही जंगल को रचता है, जहां तरह तरह की वनस्पतियां अपने नैसर्गिक रूप में विकसित होती हैं, जिनमें जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। जंगल और मनुष्य के आदिकाल से बहुत गहरे संबंध रहे हैं। पहले गांव और जंगल में कोई फर्क नहीं था। जनजातियां आज भी घने जंगलों में रहना पसंद करती हैं। महानगरों से जंगल दूर होते गए। विकसित सभ्यता ने आज जंगलों को लील लिया है, जबकि जंगल हमारे वैदिक और सांस्कृतिक चिंतन में, जीवन के विस्तार में, ज्ञान की विचारणा में, मानव जीवन का मूलाधार रहा है। जन्म से लगातार मृत्यु पर्यंत मानव जीवन जंगल पर निर्भर है। दुनिया भर में चाहे कहीं का भी मनुष्य हो, उसके लोकाचारों में कहीं ना कहीं जंगल उपस्थित है। जन्म के समय सूपे की जरूरत होती है। सूपा टोकनी बांस से बनती है। विवाह मंडप में आम, जामुन, सरई, वृक्ष की डालियों की जरूरत पड़ती है। ये सब जंगल से प्राप्त होती हैं। मृत्यु के समय सीढ़ी बांस और लकड़ी से बनाई जाती है। जंगल के मनुष्य पर बहुत उपकार हैं। जंगलों के पेड़ों में आदिवासियों के देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए वे करम, सरई आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। उनके चारों ओर स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं। वृक्षों और वृक्षों में निवास करने वाले देवताओं से जग के कल्याण की कामना करते हैं। पहाड़ और पहाड़ों पर उगे नैसर्गिक पेड़ पौधों के कारण वर्षा होती है। जंगल के वृक्ष जल संरक्षण का काम भी करते हैं। नदियों में निरंतर पानी बहते रहने का कारण भी नदियों के किनारे उगने वाले वृक्ष ही हैं। जंगलों में उगे हुए वृक्षों से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है। वृक्ष और जंगलों का ये उपकार मनुष्य, पशु पक्षी, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों तक पृथ्वी के आरंभ से बिना किसी रुकावट के मुफ्त में मिलता आया है। इसलिए जंगल हमारा जीवन है, दर्शन है।
0: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे बसंत निरगुड़े का ये आलेख। वाचक थे डॉक्टर अरविंद सोनी। विषय था जंगल। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, मिर्च हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। मिर्च की फसल सभी तरह की मौसम सहनशील होने के कारण वर्ष भर उगाई जाती है। मिर्च की फसल नकदी और अत्यधिक लाभप्रद है, लेकिन मिर्च की फसल में कीट और बीमारियों से अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए मिर्च की फसल लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाती है। बीज को बोने से पहले हमेशा फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी की भूमि को उपचारित करने के लिए कार्बोफ्लोरान 3G 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर क्यारियों में जुताई गुड़ाई के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद बीज की बुवाई क्यारियों में करनी चाहिए। बीज दर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए 1250 ग्राम पर्याप्त रहती है। मिर्च की उन्नतशील प्रजातियां हैं NP 46, पंत सीवन, जवाहर 218, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, आंध्रा ज्योति, किरण हाइब्रिड, तेजस्विनी, सूर्यमुखी। नर्सरी में समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवारों को निकालकर नष्ट करते रहें। पौधे छोटे और मुलायम कमजोर होने के कारण कीट और बीमारियों के प्रभाव से शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं। पौधशाला में मुक्त जड़ गलन, पर्ण कुंचन और मोजक बीमारियों से पौध प्रभावित होती है। जड़ गलन बीमारी में जमीन की सतह से लगा हुआ भाग काला पड़ने लगता है, जबकि पर्ण कुंचन और मोजक कीट की रस चूसने से विषाणु के प्रविष्ट होने पर फैलता है। पौधशाला में पौधों के बचाव के लिए नियंत्रण के सभी उपाय अपनाने चाहिए। पौध 4-5 सप्ताह में रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। रोपाई के लिए खेत की 3-4 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी बन जाए। अंतिम जुताई के समय 8 से 10 किलोग्राम कीटनाशक चूर्ण प्रति एकड़ भूमि में भुरकाव कर देना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में देसी खाद के साथ साथ 100 किलोग्राम नत्रजन खाद, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर मिला दें। नत्रजन खाद की 1/3 मात्रा खेत तैयार करते समय और शेष मात्रा पौध लगाने के 40 और 60 दिन बाद प्रयोग करनी चाहिए। तैयार खेत में रोपाई करने से पहले नर्सरी में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौध उखाड़ते समय पौधों की जड़ें न टूटने पाए। पौधों की जड़ों को धोकर साफ कर लेना चाहिए, जिससे मिट्टी पूर्णतः हट जाए और पौध रोपाई करने से पहले पौधों की जड़ों को 2 ग्राम बाविस्टीन फफूंदनाशक दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक उपचारित करने के बाद रोपाई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे पौधा जब तक फल देगा फसल में बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहेगी। पौधों को खेत में रोपण करने के बाद पौधों पर माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, जैसिड कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। सफ़ेद मक्खी पर्ण कुंचन और मोजक रोग के विषाणु को फैलाने का कार्य करती है। यदि इस कीट को शुरुआत से ही नियंत्रित नहीं किया जाता है तो पूर्ण फसल ही प्रभावित हो जाती है। सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए पौध रोपण के 15-20 दिन बाद मेलाथियन 36 SL 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर फूल बनने के बाद थायोडान 35 EC का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल पर अगर चूड़ी मुड़ी रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2 से 3 ग्राम घुलनशील गंधक और आधी मात्रा रोगर 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फसल स्वस्थ रहेगी और पैदावार निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। विषय था मिर्च की खेती से अधिक लाभ कैसे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई।

0: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। मीडिया वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र का प्रसारण आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुनते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थिता

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की

0: मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर भोपाल से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाता है। 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे करुणा सक्सेना से उनका काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 7:30 से 8 के बीच। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनते हैं व्हाट्सएप फरमाइश 10:05 से 11 के बीच। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को उनके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाते हैं।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। आज सुबह 8:30 बजे आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

8:58 पर सुनिए इस घंटे की खास खबरें। इसे भोपाल से प्रसारित किया जाता है। इस घंटे की खास खबरें आप सुबह 10:58 पर, 11:58 पर, दिन में 12:58 पर और दिन में 2:58 पर सुन सकेंगे। सुबह 9 बजे इस घंटे की खास खबरों के ठीक बाद आप सुनेंगे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सुबह 9:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार वादन राग होगा अहीर भैरव। जिले की चिट्ठी आप सुनते हैं रोज सुबह 10 बजे, इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करते हैं। 11 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारी शाम की सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम, साथ ही साथ 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रोतागण सुन सकते हैं। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम सुनिए और शाम 6 बजे प्रसारित होगा एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। सात बजकर 20 मिनट पर पुनः हमारे केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकता है। साथ ही साथ 7:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

रात 8 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: सुबह के 7:10 होने को हैं। सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को किया खारिज। उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे। कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कहा कि पाकिस्तान को भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट और लगातार एक जैसा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे और हमेशा रहेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने के तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान में राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा संगठन द्वारा इस अभियान के तहत जनसेवा, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कई प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन आज उज्जैन में भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश की जनता से सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की है।
1: जरूर जलाए। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 वर्ष को याद कर रहा है। सेवा और संकल्प की इस यात्रा ने भारत को नई दिशा, नई गति, नया आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने मध्य प्रदेश के हित में केंद्र सरकार निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करता हूं कि 17 सितंबर की शाम अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में एक आशीर्वाद का दीपक जरूर जरूर जलाएं।
0: वहीं इंदौर में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर इंदौर में 27 स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के साथ साथ धार, खंडवा, मंदसौर, अशोकनगर, पन्ना और डिंडौरी तथा सभी जिलों में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुँच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। यह उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम बनाती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारत के नवोदय, नवचेतना और नवसंकल्प के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिवस हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और विश्व में प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश की धरती पर वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में 4 साल पहले आज ही के दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को देश की धरती पर बसाकर अंतर महाद्वीपीय चीता परियोजना का 17 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया था। इस परियोजना के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज कूनो के टिकटोली गेट पर वन विभाग के तत्वावधान में हजारों दीप रोशन किए जाएंगे। ये आयोजन सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। ये दीपोत्सव उस संकल्प और उपलब्धि का प्रतीक होगा जिसके माध्यम से भारत में विलुप्त हो चुके चीते फिर अपनी धरती पर विचरण कर रहे हैं। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज से विशेष यात्री सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। ये अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। 24 दिन के इस अभियान में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के

0: साथ साथ उनकी समस्याओं और शिकायतों के जल्द निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बारे में भोपाल के विमानपत्तन निदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि
1: 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हम यात्री सेवा अभियान शुरू कर रहे हैं। एक में हम यात्रियों के प्रति हर दिन एक नया अभियान की सेवा है या उनकी ये वाईफाई है, ट्रॉलीज हैं, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, तो उन सबको लेके प्रतिदिन एक नई एक्टिविटी करेंगे। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत रूप से जाकर फीडबैक लें अपने सुधार के लिए और जो भी और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकें। तो
0: मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित को पुनर्गठित कर अब मध्य प्रदेश वाटर एंड सैनिटेशन कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद भेजने की मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम एमपी वास्को और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्नत तकनीक सुविधाएं, बेहतर कौशल और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। श्री परमार कल भोपाल स्थित मंत्रालय में जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शासी निकाय की 29वीं बैठक और साधारण सभा की 15वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। मंत्री परमार की अध्यक्षता में इस बैठक में महाविद्यालय के शैक्षणिक और संस्थागत उन्नयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल समेत आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भोज उद्यान में दोपहर 1 बजे जैविक खेती हाट बाजार का शुभारंभ किया जाएगा। खंडवा जिले में कलेक्टर ने आगामी गणेश उत्सव और नवदुर्गा पर्व की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मंदसौर जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 156 तीर्थयात्री कल विशेष ट्रेन के द्वारा हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। सतना जिले की कृषि उपज मंडी प्रांगण में 19 सितंबर को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में विधायक शैलेंद्र जैन ने 70वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। झाबुआ जिले में रेडक्रॉस शाखा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पर 28 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। शाजापुर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जघन्य अपराधों तथा नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कल सम्पन्न हुई। और छतरपुर में वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा के तहत 22 से 24 सितंबर के बीच 10 टोलियां प्रवास करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। उज्जैन से भव्य दीपोत्सव के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में चीता परियोजना के आज 4 वर्ष पूरे। कूनों में रोशन होंगे हजारों दीप। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मिनिमम 216.04 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए करुणा सक्सेना से काव्य पाठ।
1: आप सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में मेरी यह पंक्तियाँ निवेदित। शब्द झंकृत

0: जाना। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे करुणा सक्सेना से काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त आशी राठौर। आज कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये बधाई संदेश।
2: शिवम, पूरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सारे सपने साकार हों।

0: कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना, स्वर थे आशा भोसले के फिल्म काजल के लिए। गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रवि का था।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
5: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
5: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
6: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बड़े दिल वाला से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। बोल हैं मजरू के और संगीत है RD बर्मन का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: शिवम, पूरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सारे सपने साकार हों।
1: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सीता और गीता फिल्म से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है अजनबी फिल्म से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। इसे अपने सुरों से सजाया है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म का ये गीत।

0: सरताजी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी के सुर में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम संगम।

कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार के स्वर में सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से। गीत लिखा है मजरू ने और संगीत आर डी मर्मन का है।

0: सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल,

0: महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहाँ से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पद यात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करना लोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
5: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजिनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले दो मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्युरेट सेमिकॉन इंडिया 2026 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions, and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
0: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation, and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6 country roundtables are designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment, and chip design to fabrication, advanced packaging, electronics and systems. It will feature more than 600 participating companies and is expected to attract around 50,000 visitors with representatives from 52 countries, more than 400 executives and over 150 speakers. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
11: Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years in public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Vadnagar, in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. A report.
12: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at the historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
11: In Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi, a series of grand celebrations have been organized on the occasion of his birthday. More from our correspondent.
3: On the occasion of Prime Minister's birthday, special prayers and Rudra Abhishek will be performed at Sri Kashi Vishwanath Dham. Additionally, 500 young bikers embarking on a Seva Yatra from Varanasi to Vadnagar will be honored. Chief Minister Yogi Adityanath, Defence Minister Rajnath Singh and other guests will be present at the event. JPS Rathore, Minister of State with Independent Charge and convener of the bike rally, said that before the start of the bike rally, the water from holy rivers will be offered at Jyotirlinga of Kashi Vishwanath in Kashi. After this, the bike journey from Varanasi to Vadnagar will begin with a ritualistic worship. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
11: Delhi government will organize 4 major programs in the national capital today on the occasion of Prime Minister's birthday. More from our correspondent.
4: Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that more than 1 lakh diyas will be lit at Kartavya Path today under the Ashirwad Ka Diya program. Inspired by the guiding principle of Jan Seva Se Desh Seva, the program will convey a strong message of public participation and the spirit of service. The 1.25 lakh diyas lit together will symbolize citizens' wishes, blessings, participation and commitment to serving the nation. Meanwhile, a mega blood donation camp will be held at Thyagraj Stadium from 11 a.m. to 5 p.m. with the target of collecting 2,500 units of blood. Delhi Chief Minister said that a 108 Kundiya Yag will also be organized at Khatu Sham Delhi Dham on GT Karnal Road in Alipur. The Yagya will be held as a prayer, an expression of good wishes for the Prime Minister's good health, long life and continued service to the nation. Furthermore, a Namo Shramik Seva Kendra will also be launched for laborers offering services related to registration, document verification and welfare schemes all under one roof. Shivam Mishra, Akashwani News, Delhi.
11: President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended greetings to Prime Minister Narendra Modi on his birthday today. Today, in our special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Make in India, a major national initiative to transform the country into a global manufacturing, design and innovation hub through the PLI schemes under the Make in India initiative, India has driven over 20.41 lakh crore rupees in production and generated more than 14.15 lakh jobs to build a self-reliant nation. A report.
5: Launched in 2014, the flagship Make in India initiative has transformed the country into a global manufacturing power. Today, electronics production has surged from 1.9 lakh crore in 2014-15 to 13.11 lakh crore in 2025-26, with mobile phone exports jumping 171 times as India transitioned from a net importer to a net exporter. Highlighting Make in India and Make for the World vision, Prime Minister Narendra Modi called it as a cornerstone for

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 24 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जमशेदपुर झारखंड से सुमित कुमार मिश्रा और रिंकी राय। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

और मन के किसी शांत कोने में दीपक की तरह जलती रहती हैं। कुछ स्वर केवल संगीत नहीं होते, वो प्रार्थना बनकर उठते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। कर्नाटक संगीत के आकाश में गूंजते एक ऐसे ही स्वर का नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। एक ऐसा स्वर जिसमें भक्ति की निर्मलता थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्पंदन था। जैसे भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूकर वातावरण में पवित्र उजास भर देती है, वैसे ही MS सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकले स्वर सुनने वालों के अंतर मन को पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। उनके लिए राग केवल सुरों का अनुशासन नहीं था, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। और गायन केवल कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति। कर्नाटक संगीत की इस महान साधिका ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की सीमाओं को पार किया और भारतीय संगीत की गरिमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। वो केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवतावादी चेतना की सजीव प्रतीक थीं। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त अपनी गंधर्व वाणी को कभी व्यावसायिक लिप्सा का साधन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगीत को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, समाज कल्याण के माध्यम और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर मदुरई में हुआ। उनकी माताजी का नाम षणमुखा वदिवु था। वो एक प्रतिष्ठित और निपुण वीणा वादक थीं। इस तरह सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम मदुरई षणमुखा वदिवु सुबुलक्ष्मी हुआ। उनके पिता सुब्रमण्य अय्यर एक वकील थे। एमएस सुबुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कलात्मक विकास पर उनकी माताजी और मदुरई के संगीतमय वातावरण की अमिट छाप पड़ी। उनका बचपन मीनाक्षी मंदिर की गलियों में नादस्वरम की धुनों, मंदिरों के भजनों और उनकी माताजी द्वारा बजाई जाने वाली वीणा की झनकार के मध्य व्यतीत हुआ। संगीत उन्हें किसी औपचारिक कक्षा से अधिक अपनी पारिवारिक परंपरा और घर के वातावरण से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी माताजी ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और बहुत कम उम्र में उन्हें वीणा और कर्नाटक गायकी का कठोर अभ्यास कराना आरंभ कर दिया था। उन्होंने संगीत के पितामह कहे जाने वाले सीमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक गायकी के गूढ़ तत्वों को ग्रहण किया। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक थी कि उन्होंने केवल कर्नाटक संगीत तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंडित नारायण राव व्यास से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां भी सीखीं तथा भारत के संगीत जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित हो गईं।

एक्ट्रेस सुबोलक्ष्मी ने बहुत कम उम्र में ही मंचीय प्रस्तुतियां आरंभ कर दी थीं और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ और आम श्रोता सभी उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी विशेषता थी कि वो स्वर, ताल और लय की पूर्ण शुद्धता के साथ कठिन रागों को गाया करती थीं। यही कारण है कि सुनने वालों को ये अंदाजा हो चुका था कि एक महान गायिका का उदय हो चुका है। इस तरह उनकी रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मलयाली से लेकर पंजाबी तक भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। सन 1940 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी पत्रकार और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निकट सहयोगी के सदाशिवम के साथ संपन्न हुआ। सदाशिवम के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद एमएस सुबोलक्ष्मी के जीवन को एक नया वातावरण मिला। सदाशिवम केवल उनके जीवन साथी नहीं थे, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अभियानों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। इस विवाह ने एमएस सुबोलक्ष्मी को सीधे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी के विचारों और तत्कालीन नेताओं के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिकारों और शीर्ष कलाकारों की आवाजाही का केंद्र बन गया। एक कलाकार के रूप में एमएस सुबोलक्ष्मी की सबसे बड़ी विशेषता थी श्रुति शुद्धम, यानी स्वर की निरपेक्ष शुद्धता, और साहित्य भाव, यानी शब्दों के भाव की अंतरात्मा से अभिव्यक्ति। उनके गायन में अलौकिक तन्मयता थी। वो सीधे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कठिन रचनाओं को क्लिष्टता के बंधन से मुक्त कर उसे आम जनमानस के लिए भक्ति का सुगम मार्ग बना दिया।

एमएस सुबुलक्ष्मी के दिव्य स्वर ने भक्ति संगीत को व्यापक तौर पर लोकप्रिय बनाया। उन्होंने दक्षिण भारत के संत कवि अलवार और नायनार के संकीर्तन से लेकर उत्तर भारत के संत कवियों की रचनाओं को देश भर में घर घर तक पहुंचाया। एमएस सुबुलक्ष्मी ने फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें सबसे यादगार है सन 1945 में आई फिल्म मीरा। इसमें उन्होंने मीरा की भूमिका निभाई तथा कई मधुर मीरा के पद गाए। उनके स्वर माधुर्य ने पूरे देश को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके गाए भक्ति संगीत की सूची में ऐसी कई रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। उनके द्वारा किया गया विष्णु सहस्रनाम का सस्वर पाठ केवल एक संगीतमय प्रस्तुति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी आवाज में वेंकटेश सुप्रभातम भी एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।

एमएस सुबुलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के महान संत कवि अन्नमाचार्य की रचनाओं को गाकर उसे व्यापक लोकप्रियता दिलाई और जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य रचित वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण स्रोत भज गोविंदम को एमएस सुबुलक्ष्मी ने स्वर और भाव प्रदान किया तो जैसे हर मन इस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा।

एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराई और पश्चिमी दुनिया को भारतीय संगीत के आध्यात्मिक और शास्त्रीय वैविध्य से परिचित करवाया। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में सबसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण 23 अक्टूबर सन 1966 का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी दिव्य प्रस्तुति दी। इस सभा में गाने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थीं। ये वो दौर था जब पूरा विश्व शीत युद्ध के तनाव से गुजर रहा था। इस कार्यक्रम में अपनी तमाम प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने विशेष प्रार्थना गाई, मैत्रीम भजता। ये केवल एक गीत नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए

एमएस सुब्बुलक्ष्मी का नाम उन चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल है जिन्होंने अपनी कला से अर्जित अधिकांश धन समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 चैरिटी कॉन्सर्ट किए। वो एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उनके समय के दिग्गज कलाकारों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा। किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का आठवां सुर कहा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। महात्मा गांधी भी उनके बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो इस दिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन हरि तुम हरो जन की भीड़ सुनना चाहते हैं। जब ये संदेश चेन्नई पहुंचा तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने विनम्रतापूर्वक संदेश भिजवाया कि उन्हें ये भजन पूरी तरह याद नहीं है और इतनी जल्दी इसे गाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि यदि वो इसे केवल बोल भी दें तो भी वो मुझे किसी अन्य के गायन से अधिक शांति और आनंद देगा। गांधी जी के इन शब्दों को सुनकर एमएस सुब्बुलक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत ये भजन सीखा और रिकॉर्ड किया और 2 अक्टूबर की सुबह ये भजन दिल्ली पहुंचाया गया और प्रार्थना सभा में बजा। लेकिन ये भी कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने इस दुखद समाचार की सूचना देने के तुरंत बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया यही भजन प्रसारित किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला कलाकार हैं। वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहली संगीतज्ञ हैं। संगीत जगत को अपने अनगिनत गीतों की अनमोल विरासत सौंपकर 11 दिसंबर सन 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण स्वर साधिका को।

ये हमारा ईमेल एड्रेस है waterkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने निर्माण और इससे जुड़े अन्य कार्यों में लगे देशभर के कारीगरों और कुशल श्रमिकों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में जनसेवा, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक और मराठवाड़ा वाले हैदराबाद क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये दिन उन लोगों की देशभक्ति और वीरता की याद दिलाता है जिन्होंने निज़ाम और रजाकारों के दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के साथ एकजुट हुए। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। ये बड़े मांसाहारी वन्यजीवों के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास का दुनिया का पहला प्रयास था। इस कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है और उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने कल डोमिनिकन गणराज्य को 4-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। शीर्ष वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, वंतिका अग्रवाल और बी सविताश्री ने अपने अपने मुकाबले जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज रहे हैं। अब समय है सूचना, समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

सूचना समाचार और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में मैं आशी राठौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, त्योहारों का मौसम है और गली गली गणपति बप्पा विराजमान हैं। आज की तारीख है 17 सितंबर। आज क्या खास है, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आज विश्वकर्मा पूजा भी है और इस दिन को 17 सितंबर को हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में भी जानते हैं, साथ ही साथ हिंदी पखवाड़ा सप्ताह भी हम मना रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। बात की जाए विश्वकर्मा पूजा की। श्रोताओं, ये भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। यह पर्व भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और वास्तुकला तथा निर्माण का देवता माना जाता है। मान्यता है उन्होंने देवताओं के लिए सुंदर महल, भवन, अस्त्र शस्त्र और नगरों का निर्माण किया था। इसलिए कारीगर, इंजीनियर, मजदूर और मशीनों से जुड़े लोग विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन कारखानों, दुकानों, कार्यशालाओं और कार्यालयों की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। मशीनों, औजारों, कंप्यूटर और काम में आने वाली अन्य वस्तुओं को साफ करके उनकी पूजा की जाती है। लोग अपने कार्यस्थल को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके पूजा की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। यह पर्व हमें अपने काम और मेहनत का सम्मान करना सिखाता है। हमारे जीवन में औजारों और मशीनों का बेहद महत्व है। किसान के लिए खेती के उपकरण हो या फिर कारीगर के लिए उसके औजार, साथ ही साथ मजदूरों के लिए उनकी मशीनें, हर काम का मशीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन इन सभी चीज़ों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। श्रोताओं, विश्वकर्मा पूजा हमें ये संदेश भी देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत, लगन और कौशल से किया गया हर काम सम्मान के योग्य है। हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपने उपकरणों, मशीनों की सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा केवल भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का पर्व नहीं, बल्कि मेहनत, हुनर, तकनीक और सृजन का सम्मान करने का दिन भी है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए और देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग ग्वालियर में बातें अभी और भी हैं, उससे पहले रुक कर सुनते हैं ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, भावनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी को सम्मान देने, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने तथा लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। यह पखवाड़ा हिंदी भाषा के महत्व को समझने और अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। 14 सितंबर का दिन हिंदी के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हमारे देश में इस सप्ताह में कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना पैदा करना है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दौरान लोगों को यह समझाया जाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना अपनी संस्कृति और पहचान का सम्मान करना है।

पखवाड़ा केवल हिंदी बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंदी में पढ़ने, लिखने, विचार व्यक्त करने और अपने कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ाने का अवसर भी है। इस दौरान कई स्कूलों, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में, संस्थानों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, कहानी लेखन, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी, श्रुतलेख और पोस्टर प्रतियोगिता, ये प्रमुखतः हम देखते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। श्रोताओं, हिंदी जो भाषा है वो अपने आप में इतनी समृद्ध है, हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसे हम अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं और अपने परिवार, अपने दोस्तों से अपने मन की बात कहते हैं। कई संस्थानों में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों लोगों को पुरस्कार और सम्मान भी दिया जाता है। इससे लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह और रुचि बढ़ती है। भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषाओं में से हिंदी एक है। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से आसानी से संवाद करते हैं। हिंदी ने भारत की विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर बात करें हिंदी साहित्य की, तो वो भी अपने आप में बेहद समृद्ध है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को बेहद समृद्ध बनाया है। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन, समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के अनेक देशों में हिंदी को समझने और सीखने वाले लोग मौजूद हैं। फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी का विस्तार लगातार हो रहा है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके को समृद्ध बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत से कवि कवित्री अपना हिंदी पाठ, कविता पाठ हिंदी भाषा में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाते हैं। आज हिंदी में समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और डिजिटल सामग्री भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर बात करें हमारे डिजिटल युग यानी तकनीकी क्षेत्र की, तो हिंदी का प्रयोग यहाँ भी बेहद तेज़ी से बढ़ा है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट पर हिंदी में लिखना और पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। जो बात हम टेक्नोलॉजी इस युग की करते हैं, तो हिंदी को लिखना भी बेहद आसान है। हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो हिंदी में कई सारे ऐप्स उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम अपने जो मन की बात है वो हिंदी भाषा में सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को बता और समझा सकते हैं। इसलिए हमें आगे भी आधुनिक तकनीक के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी श्रोताओं केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं होती, बल्कि हम सभी की है। हमें अपने दैनिक जीवन में हिंदी का सम्मानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंदी की अच्छी पुस्तकें, कहानियाँ और कविताएँ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। न केवल हिंदी, हमें दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत अनेक भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है। किसी भाषा का सम्मान करने का अर्थ दूसरी भाषा का विरोध करना कतई नहीं है। हमें सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। हिंदी पखवाड़ा केवल 15 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक होने का संदेश है। हिंदी हमारी भावनाओं
और विचारों को व्यक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है। हमें हिंदी को केवल एक विषय के रूप में नहीं

बल्कि अपनी दैनिक जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो श्रोताओं, हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे, हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हिंदी के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से जोड़ेंगे। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान, हिंदी का विकास भारत का विकास। और जैसा कि श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को इलाज के दौरान होने वाली गलतियों और नुकसान से बचाने के लिए जागरूकता फैलाना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है प्रत्येक मरीज को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का इतिहास अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जुड़ा हुआ है। मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद पहली बार 17 सितंबर 2019 को यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगी सुरक्षा को स्वास्थ्य सेवाओं को की प्राथमिकता बनाना और इस विषय पर सरकार, डॉक्टरों, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी तथा आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। रोगी की सुरक्षा केवल डॉक्टरों और नर्स की जिम्मेदारी नहीं बल्कि है इसमें अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मचारी, मरीज और उनके परिवार सभी की भूमिका होती है। सही मरीज की सही पहचान, सही दवा, सही समय पर इलाज, संक्रमण से बचाव और चिकित्सा संबंधी जानकारी को सही तरीके से साझा करना रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये दिन हमें यह भी सिखाता है कि अस्पताल में छोटी सी सावधानी भी किसी मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। वहीं मरीज और उनके परिवार को भी अपनी बीमारी, दवाइयों और इलाज से जुड़ी जानकारी डॉक्टरों से सही प्रश्न पूछने चाहिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का संदेश क्या कहता है कि सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है। हमें ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां मरीज को बेहतर इलाज के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और विश्वास भी मिले। श्रोताओं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हमें स्वास्थ्य व्यवस्था में सावधानी, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं का महत्व समझाता है। यदि डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, मरीज और समाज, परिवार मिलकर प्रयास करें तो चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में आपसे चर्चाएं अभी और भी हैं, उससे पहले रुक कर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सप्ताह भर हम पढ़ाई, काम और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण शरीर और दिमाग को आराम की आवश्यकता होती है। सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को पर्याप्त नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोरिया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में 40,000 वयस्क लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि वीकेंड पर करीब 80 मिनट अतिरिक्त सोने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 9% तक कम हो सकता है। जी हाँ, हालांकि 4 घंटे से ज़्यादा अतिरिक्त नींद लेने पर जोखिम भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने इसे एक्सरसाइज का विकल्प नहीं माना, पर यह एक बहुत अच्छी खबर है कि भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के बढ़ते दबाव के बीच अगर आप भी हफ्ते भर काम के बाद वीकेंड पे यानी सप्ताहांत पर थोड़ा ज़्यादा सोते हैं तो ये आपके दिल की सेहत के लिए राहत की खबर है। दक्षिण कोरिया की कोरिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि वीकेंड पर ली गई अतिरिक्त नींद आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकती है। इस शोध को म्यूनिक यानी जर्मनी में आयोजित यूरोपीय सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी सम्मेलन में भी प्रस्तुत किया गया। जी हाँ श्रोताओं, सप्ताहांत में पूरी नींद लेने से शरीर की थकान तो कम होती ही है, साथ ही हम अगले सप्ताह के लिए भी स्वयं को तरोताज़ा महसूस करते हैं। पर्याप्त नींद लेने से एकाग्रता, याददाश्त और कार्य करने की क्षमता बेहतर होती है, ऐसा ये शोध बता रहे हैं। इससे तनाव और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। बच्चों और किशोरों के लिए तो अच्छी नींद विशेष रूप से ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान शरीर के विकास और मानसिक स्वास्थ्य में मदद मिलती है। यदि सप्ताह भर नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती है तो सप्ताह में थोड़ा अतिरिक्त आराम मदद कर सकता है, लेकिन यह नियमित नींद की कमी का पूरा विकल्प नहीं है। तो कहा जा सकता है कि अच्छी और पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सप्ताहांत का समय जो होता है वीकेंड, वो आराम, नींद और परिवार के साथ बिताने के लिए उपयोग करना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। कार्यक्रम में चलते चलते आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो चला है गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम को विराम देने का, तो अपनी मित्र राशि को दीजिए अनुमति नमस्कार, और इसी के साथ साथ ही अब ये कार्यक्रम भी समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार वादन। तो आइए सुनते हैं पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार वादन। राग है अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित साहित्य कुमार नाहर का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। अब समय हो गया है जिले की चिट्ठी का। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खून। इसके लेखक थे अब आप सुनेंगे सागर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। सेवा और समर्पण से जुड़े आयोजनों में आम जनता भी सहभागिता कर रही है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की बीते दिनों खुद समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत निर्धारित सभी गतिविधियां व्यापक जनभागीदारी और बेहतर विभागीय समन्वय के साथ समय सीमा में संपन्न कराई जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। बीते दिनों सेवा संकल्प अभियान को लेकर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से कार्यक्रमों पर चर्चा की। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के लोक सेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होना सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा का अवसर है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चला रही है। पिछले दिनों सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई दुखद घटना के पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अवैध जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु के प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश भी दिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की। बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहरीली शराब से हुई मौतों की घटना पर दुख जताया और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। श्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। इसमें धारा 49 और 304 जोड़ते हुए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है। श्री चौहान ने कहा कि जो भी इस प्रकार की घटना में लिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं जिले के मौसम की। सागर जिले में इस बार अभी तक पर्याप्त बारिश हो चुकी है। जिले में अतिवर्षा से कुछ स्थानों पर फसलें प्रभावित हुई हैं। अधिक बारिश से कुछ क्षेत्रों में उड़द की फसल को हुए नुकसान को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और

कृषि विभाग के मैदानी अमले को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उड़द फसल की क्षति का तत्काल और पारदर्शिता के साथ भौतिक सत्यापन शुरू कराएं। पिछले दिनों प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में खुरई में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। खुरई स्थित पार्क में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण भी इस मौके पर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि महापुरुषों के विचार और उनका जीवन समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहता है। इस अवसर पर क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिसमें 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खुरई का नवीन नगर पालिका भवन, मिडवे रिट्रीट तथा गुरु तेग बहादुर चौराहे के उन्नयन तथा विकास कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और सांसद लता वानखेड़े भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं युवाओं से जुड़ी गतिविधियों की। एनसीसी सागर के बालिका बटालियन के तत्वावधान और कैंप कमांडेंट कर्नल सुजीत देशमुख के नेतृत्व में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीते दिनों सिरोजा स्थित स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिसर में 4 सितम्बर से 13 सितम्बर के बीच किया गया। इस शिविर में लगभग 400 बालक एवं बालिका कैडेट्स की सहभागिता रही। वहीं विधिक जागरूकता के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष एमके शर्मा के मार्गदर्शन और विशेष न्यायाधीश तथा समन्वयक नेशनल लोक अदालत सागर विवेक सिंह रघुवंशी के निर्देशन में जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालत का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर के ADR सेंटर भवन के सभागार में किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल 2333 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। सागर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं। अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी गीत आपको सुनवाते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआती करने से पहले हम सुनते हैं ये बधाई संदेश।
2: शिवम, पूरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सारे सपने साकार हों।
3: Oh yeah, little sad. Very sad, yeah?

श्रोताओं, अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म जिगरा से। आवाज़ थी अनुमिता नदीसन और अरिजीत सिंह की। इस गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीत था अंचित ठक्कर का। अब पसंद आप सबकी। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। इसी गीत को सुनने की फरमाइश थी दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नाइमा बेगम, कसीम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। साथ ही साथ प्रमिलागंज जिला रतलाम से मालवा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है आप सब की। आप हैं नांदेड से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन और मुस्कान जैन, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनना चाहते हैं दिल से फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने और अपने सुरों से सजाया है अनुराधा और एआर रहमान ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनने की फरमाइश है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडामा। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रीतु और मुकेश जगताप। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर बाजीगर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और अपने सुरों से सजाया है कुमार सानू और अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: शिवम, पूरे परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, आपके सारे सपने साकार हों।
4: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागड़ी। साथ ही इसी गीत को सुनने की फरमाइश है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी, अंकित कांगड़ा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, संचित देशमुख, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। आप सब सुनना चाहते हैं दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने, स्वर हैं उदित नारायण के। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाते हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9425702768। फिल्म और गीत के नाम के साथ साथ आप अपना नाम और पता हमें लिख भेजिए। व्हाट्सएप फरमाइश की अगली फरमाइश आई है इस गीत के लिए, जिसे अपने सुरों से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत एआर रहमान का, फिल्म जुबैदा के लिए। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। आप हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, बगबुढ़वा पथरिया से, नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मजनू गटीरा से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्राकर, अमर ताम्राकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्राकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश सौम्या और उनके मम्मी पापा। रोहिदास चौक पंढरपुर से इसी गीत को सुनने की फरमाइश है प्रशांत सिंधे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि

शिंदे और कृष्णा गोडके की, साथ ही साथ झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ये गीत सुनना चाहते हैं जो है बागबान फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, स्वर है सुदेश और अलका याग्निक के। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सभी श्रोतागण सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, अनुराग और मोहन। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू। मुकाम पोस्ट तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, मानुबी मुलानी और बादशाह मुलानी। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। साथ ही साथ कोपर गांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, शिवगांव से श्रीराम गोंदली और उषा गोंदली। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सब सुनना चाहते हैं अजनबी फिल्म का ये गीत, बोल हैं समीर के और संगीत अनु मलिक का। इस गीत को अपने सुरों से सजाया है अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने। आइए सुनते हैं चलते चलते कार्यक्रम का ये गीत।

इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 11 बजते हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: semiconductor manufacturing ambitions as stated in SEMICON 2.0. Together, we can build the capabilities, partnerships, and innovative ecosystem needed to turn India's enormous potential into lasting progress. I look forward to our collaboration and thank you.
1: ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हुए ASML से आमंत्रित प्रतिनिधि और वक्ता ने गुजरात में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, साथ ही टाटा इंडस्ट्रीज के साथ जो साझेदारी में कार्य किया जा रहा है उसका उल्लेख भी किया। हम आपको बताएं कि इस समय यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज उद्घाटन सत्र चल रहा है। 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा और इस वर्ष की थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग इकोसिस्टम, यानी हम किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम, एक व्यवस्था जो है उसे विकसित कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो देश हैं, अन्य देश जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी साझेदारी है और इस समय इस आयोजन में विदेशी प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन, यानी 6 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप, नवाचार इस दौरान प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं कि क्या कार्य भारत में हो रहा है और किस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।
2: Yes, indeed. And as we mentioned earlier, that Sri Ashwini Vaishnav, the Minister for Electronics and Information Technology.
3: Shri Narendra Modi ji ka bhi janmadin hai. हम सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, सेमिकॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के कई कई दशकों तक विकास के लिए जरूरी है। फॉर मेनी डेकेड्स इंडिया वॉन्टेड टू हैव अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बट ओनली under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we could build this foundation of the foundational industry. In the Semicon 1.0, we could make that beginning. We started with a very measured and a very calibrated program, the program which was focused on making sure that the industry can set the base in our country. And the focus was very much on getting the right talent, making sure that the ecosystem builds in our country. That was the beginning. That is the foundation we have been able to lay in the first 12 years of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership of this country. Now we have to build the building over this foundation. I'll talk very briefly about the next round of Semicon, the Semicon 2.0. Semicon 2.0 will build the semiconductor industry over 6 pillars. Pillar number 1 is design. Semicon 1.0 mein we had lots of startups trying to see how we can design the chips. We had good success. More than 105 startups could participate in it, and about 20 of them got VC funding of about 800 crore rupees. But that was just the beginning. This time our ambition is much bigger. We would be targeting at least 200 startups and companies which design chips in India across the spectrum of semiconductor requirements. The pillar number 2 is machines and materials. We have so many ecosystem partners present here, and I'm very happy to see more than 28 countries participating in this conference today. Every aspect, whether it is capital equipment, whether it is maintenance facilities, whether it is chemicals, whether it is gases, every part of the ecosystem is part of the Semicon 2.0. And that's where I recall 5 years ago when we started this program, Prime Minister very clearly told us, guided us, don't think short term, think long term. Don't think fab, think ecosystem. And that is what has continuously guided us in this program. And that is reflected in the way we have designed the entire Semicon 2.0. Semicon 2.0, the second pillar will be machines and materials. And I thank Prabhu for announcing the $5 billion investment that you have announced. This will go a long way in generating employment in our country. Pillar 3 will be more display, memory, silicon, compound and logic fabs. More the merrier. The ecosystem runs over that, builds over that. That has the multiplier impact. Pillar 4 will be more advanced packaging units. We already have a 3D packaging unit coming up in Odisha. We would like to have much more progress in the advanced packaging because that is a very important part of the entire value chain. Pillar 5 will be research and development. This time we'll take up projects where some really cutting edge industry required R&D can be taken up. And this will be fully driven by the industry and academia, absolutely working in harmony, in synchronization. It won't be a isolated kind of R&D, it will be very applied kind of R&D that we would be looking at. And I'll request the industry participants present here to suggest the projects that you would like to take up. We have very strong academia in our country, very strong base we have. We would like to present that to you. The pillar 6 is about talent. In the Semicon 1.0, we promised that we will train 85,000 design engineers over a period of 10 years. Happy to report that in 4 years itself, we have been able to train 70,000 design engineers. And many of those students today presented their chips to Honorable Prime Minister. And not just the big cities, throughout the country, from Rourkela to Jammu, to Puducherry, to Meghalaya, every part of the country today, more than 400 universities have world's latest EDA tools from Cadence, from Siemens, from Synopsys. All these EDA tools are today available to the students. They are designing their chips. They are converting their ideas to real practical projects. And we are using a semiconductor laboratory at Mohali for taping out those chips and making sure that the student gets the confidence from idea to execution. And it's a rare capability. I thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. You gave that vision to us. You gave that target of absolutely industry-oriented talent development, and we have been able to deliver on that. And in Semicon 2.0, we will take a big task for developing the technician talent, the clean room talent, the factory floor talent, and we will be targeting 1 lakh talent to be developed, which will straight away be employed in the factories which are coming up in India, and it will be a global pool of talent which will be available. So that will be a very big goal for us in the Semicon 2.0. This is a long journey. We have taken the first step. We are now taking the second step. We have built the foundation, and this is what is going to be the foundation and the journey which takes us to develop nation, Viksit Bharat. Thank you very much, friends. Bharat Mata Ki. Bharat
2: Mata. That was the Union Minister for Electronics and Information Technology, Information and Broadcasting and Railways, Shri Ashwini Vaishnav, who mentioned about the Honorable Prime Minister's vision of Semicon 2.0, and that is going to be built on six pillars, and those pillars are designing machines and materials, more display, more advanced packaging units, cutting-edge industry-required research and development and talent. And Neelam, as we know that industry is also going ahead, racing ahead to Industry 4.0. So this augurs really well for our young talent pool. And the minister mentioned that investments that have been promised by the various leading global semicon industry players, they are going to make India indeed a global powerhouse, and it will have a multiplier effect in having more advanced technologies, as well as it will create huge, huge employment opportunities for the youth of India.
1: जी बिल्कुल. और अब जो चिप है उसे हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा उपकरण है जो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित है. ये कारों से लेकर ड्रोन्स तक, विमानों तक, एमआरआई मशीनों तक, उपग्रहों तक, सभी में लगा होता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय यहाँ पर एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर. और CDIL
2: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon, and this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
1: Ji, aur jo upasthit jan samuh hai is samay Kartal Dhwani se is pal ka swagat karta hua, yahan par chhaviyan dikhai ja rahi hain alag alag in kshetron se judi hui, aur is tarah se Semicon 2026 ka udghatan satra jo hai bahut kuch apne aap mein samete hue hai, aur sath hi हमें ये बताता हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है, और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है. इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे. और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है. हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल. और यहाँ एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का.
2: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव. एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम, दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors, and that is what everything is now based on, these small chips which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
1: Ji bilkul. Aur make in India, ease of doing business, sath hi nivesh ka hub banane ka jo sankalp hai maninya pradhanmantri ji ka desh ko, isne ek pura is tarah ka ecosystem taiyar kiya hai, kaisi vyavastha taiyar ki hai जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं. और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी व्यवस्था तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना, और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना, और जो स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसे एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, एक ऐसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ ही. और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है. और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।
2: Yes, you are absolutely right. And as the Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav mentioned, and now the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
4: Thank you. केंद्रीय

0: ये मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितेन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, डेलीगेट्स और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के, भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बस पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी तीन दशक के बाद करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइंस से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है। और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका के कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो ये कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाएं तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और अभी आपको बताया गया इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। AI के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल AI डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है, और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was addressing the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honorable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled at Yashobhumi. The Honorable Prime Minister in his speech mentioned that the month of September started on a very positive note for India, with the recording of 7.8% growth rate in the first quarter of 2026. The Prime Minister also mentioned that India is committed to inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India's a success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India

0: the weaponization of supply chains should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।

दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाएंगे जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत सुनेंगे फिल्म राजी से। गीत लिखा गुलजार ने, संगीतकार शंकर एहसान लॉय। फरमाइश आई सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म श्री 420 से। गीत लिखा शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

राहत फ़तेह अली खान के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म लव आजकल से। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम। फरमाइश हमें आई है महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, एकांश बदलापुर मुंबई से, सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली, श्वेता, सुमित गवाड़कर, ध्वनि और टुक टुक गवाड़कर। अगले श्रोता पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन। फरमाइश हमें आई है महाराष्ट्र से, मानोरा वाशिम से। श्रोता हैं ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस, प्रणीता, शैलेशपुरी, सोनमपुरी और धनुषपुरी। अगली श्रोता पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता, आयुषी और सानवी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से अगला गीत सुनेंगे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के स्वर में। गीत लिखा इरशाद कामिल ने, संगीतकार विशाल शेखर। फरमाइश हमें आई है छबड़ा ज़िला बारों से, श्रोता हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथ में हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Senna.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 30वीं कड़ी।

अब तक की कहानी ये है, पहिया वही जो चलता रहे, जो खड़ा हो गया वो खंबा। विकास का पहिया किसी मंजिल पर पहुंचकर रुकता नहीं, अबाध चलता रहता है। थम जाए तो विकास भी थम जाता है। सरपंच जमुनिया के नेतृत्व में फतेहपुर गांव की विकास यात्रा निरंतर जारी है। पिछले अंक में आपने सुना कि जमुनिया ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिए गांव के एक बेरोजगार युवक को स्वरोजगार का रास्ता दिखाया। उस युवक से प्रेरणा लेकर गांव के अन्य बेरोजगार युवक स्वरोजगार की तलाश में जुट गए हैं। अस्वस्थ जमुनिया का हालचाल जानने गांव आई उसकी डॉक्टर बिटिया रूपस फतेहपुर के लोगों के लिए सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का तोहफा साथ लाई है। अब आगे।

0: माँ लगता है वो लोग आ गए। अच्छा चलो उनका स्वागत करें।
1: स्वागत? माँ वो दोनों मेरे दोस्त हैं।
0: अरे वो ठीक है, लेकिन हमारी पंचायत में स्वास्थ्य शिविर चलाने आए डॉक्टर हैं दोनों, पंचायत के मेहमान हैं।
1: ए सरपंच जी के मेहमानों, चलो अब घर के भीतर चलते हैं।
2: अब हम मेहमान हो गए हैं?
1: ये मैं नहीं कह रही, अभी अभी अम्मा ने तुम दोनों को मेहमान कहा।
3: अम्मा के लिए बच्चे कैसे मेहमान बन गए।
1: अम्मा आओ, ये है डॉक्टर सबा, मेरे साथ पढ़ती थी मेडिकल कॉलेज में।
3: अच्छा?
1: इसका मियां अनवर भी डॉक्टर है।
3: अरे
1: और ये है डॉक्टर प्रसून।
2: नमस्ते अम्मा जी।
1: नमस्ते। मेडिकल कॉलेज में हम तीनों साथ ही पढ़ते थे।
0: सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई।
3: बड़ा आराम का सफर था अम्मा। गांव को जोड़ने वाली सड़क तो पक्की हो गई है।
2: हाँ, अरे भाई गांव के भीतर भी पक्की सड़क और गांव में साफ सफाई देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ।
1: ये फतेहपुर गांव है डॉक्टर साहब।
2: अच्छा,
1: समझे?
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे ओ फतेहपुर की वानर सेना, चलो जाओ अपने अपने घर, चलो शोर मत मचाओ यहाँ पर। अरे तुम लोग भी भीतर चलो, आ जा।
2: हाँ,
3: अम्मा चाय पियेंगी?
0: हाँ अभी बनाती हूँ।
3: नहीं अम्मा, आज चाय मैं बनाऊंगी।

0: बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ मैं।
1: अच्छा?
0: ये लोग हमेशा कहते हैं, सबा अगर तुम्हारी डॉक्टरी नहीं चली तो कोई बात नहीं, चाय की दुकान तो तुम्हारी चली ही जाएगी।
2: बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं।

0: भाइयों और बहनों, सभी गांव वालों के लिए सूचना, 3 दिन का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाएं।
1: इमरती भाई, मेवालाल कहाँ गया है?
2: सब बैनर बांध रहा है टेंट के बाहर, बाकी सब इंतजाम हो गए हैं। दरियां बिछ गई हैं, आप लोगों के लिए मेजे कुर्सी भी लगा दी हैं मैंने।
1: अच्छा,
3: और वो पीने के पानी का इंतजाम हो गया?
2: वो भी हो गया साहब।
3: हाँ देखो भाई, 10 बजने को है, लोग आने लगेंगे अब। हाँ
2: कुछ लोग तो आ भी गए हैं साहब, चले।
3: हाँ चले,
4: फिर हम लोग भी चलते हैं। जरा वहाँ देख लें चल के पूरा इंतजाम, और अपनी जगह भी जरा संभाल लें।
3: हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए।
1: भाइयों और बहनों, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और सबसे पहले ये लाउड स्पीकर बंद कीजिए जरा। सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए। हम कुछ डॉक्टर मिलकर जन स्वास्थ्य कल्याण समिति नाम से एक संस्था चलाते हैं। हमारी संस्था ने आप लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये शिविर लगाया है। शांत शांत शांत शांत हो जाइए। अब मैं आपको हमारी टीम से मिलवाती हूँ। ये है डॉक्टर प्रसून।
3: आप सबको नमस्ते।
1: और ये है डॉक्टर सबा।
4: नमस्ते। नमस्ते भाई।
1: और मैं
5: ये है डॉक्टर रूपस।
1: जी बिल्कुल, आप सभी की अपनी डॉक्टर रूपस। तो चलिए अब जांच का काम चालू कर रहे हैं। सुनिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, एक एक करके आते जाइए। चलिए।
3: आराम से एक एक करके आइए। हाँ भाई देखो, हाँ भाई ये एक काम करो, जबान खोलो अपनी। ये सब ठीक है, चलो।
1: डॉक्टर साहब आपको भी हमका पेट में।
3: आइए आराम से आइए।
5: डॉक्टर साहब
3: सांस लीजिए,
5: हमारा पेट दुख रहा। डॉक्टर साहब
1: आप यहाँ आइए, लाइए हाथ दिखाइए।
5: हमारे ये सुई तो नहीं लगाएंगे?
1: सुई नहीं लगाएंगे, पहले जांच तो कर लें।
5: ये बहुत दुखता है, यहाँ पीछे।
1: कुछ चोट लगी थी कुछ दिन पहले?
5: हाँ वो गिर गए थे, पैर फिसला टपक गए।
1: कोई बात नहीं, हम आपको दवाई लिख देते हैं, इसे 7 दिन तक जरूर लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
3: चलो भाई, आज का काम तो बढ़िया निपट गया।
4: सही कहा डॉक्टर प्रसून आपने, मान गए फतेहपुर वालों को, बड़ी जागरूकता है इन सबको स्वास्थ्य के प्रति। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब देख के।
3: भाई इस बात का अंदाज कल गांव में प्रवेश करने के बाद यहाँ की सफाई देखकर तो मुझे पहले ही हो गया था। हाँ।
1: अरे इमरती मौसी।
6: हाँ?
1: चाय में देर क्यों हो रही है बाबा?
6: तैयार है,
2: ये लीजिए डॉक्टर साहब।
3: अरे चाय लीजिए। नजर देखने से पता चल जाता है कि यहाँ की पंचायत और लोगों ने गांव के विकास की सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है। हाँ
7: हाँ, ये बैठी है ना जमुनिया जी, सब इनका किया धरा है।
8: जैन जी को मिल गया एक मौका गुणगान का। थोड़ा बहुत हो गया है, काफी बाकी है। अब जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को ही ले लीजिए।
7: हाँ, और इसका लाभ भी मिलने लगेगा, अब हमारे जिले में भी लागू होने वाली है ये योजना।
4: जैन जी, मैंने भी सुना है इस योजना के बारे में, कल्याण योजनाओं के लाभ

0: सीधे लाभार्थियों को मिलने लगेंगे,
1: यानी बिचौलियों का सफाया।
2: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने।
3: मेरा ख्याल है अब सामान समेटा जाए, है ना, थक गए होंगे आप लोग भी। आप लोग भी घर चलकर थोड़ा आराम कर लो, है ना।
4: नहीं अम्मा, मैं तो ना गांव घूमना चाहूंगा। हाँ
2: तो फिर हमारे गांव का तालाब देखो।
4: हाँ भाई जरूर देखेंगे।
2: गांव वालों ने श्रमदान से बनाया है।
4: अच्छा।
2: हाँ, और पास ही आम अमरूद इमली का बढ़िया बगीचा है, खूब बड़ा है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को।
4: तो फिर चलिए जरूर देखेंगे।
2: हाँ चलिए।
3: सबा बेटिया तुम भी देख कर आओ।
5: अम्मा मैं तो आपके साथ घर ही चलूंगी, बहुत सारी बातें करना है आपसे। दोनों मिलके बैठेंगे, कुछ अपनी सुनाऊंगी, कुछ आपकी सुनूंगी।
3: चलो बात करेंगे।

0: वाह, क्या खूबसूरत जगह है।
1: पहले यहाँ गंदा सा एक पोखर होता था जिसमें पानी कम और कीचड़ ज्यादा होती थी।
0: अरे, इसे देखकर तो यकीन ही नहीं होता भाई।
1: पहले पानी की किल्लत थी ना, मगर अब भरपूर पानी है गांव में।
0: अच्छा,
1: और वो भी इस तालाब की बदौलत।
0: वाह भाई, वाकई कमाल का गांव है फतेहपुर। और फतेहपुर वाली भी।
1: अच्छा डॉक्टर प्रसून, मुझे लग रहा है कि आप फिर से रोमांटिक मूड में आ रहे हैं। शायद
0: नहीं, यकीनन।
1: अच्छा,
0: अरे भाई माहौल ही रोमांटिक है।

0: प्यार है।
1: क्या बात है,
0: मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है ये हवा।
1: डॉक्टर प्रसून, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है तलत महमूद साहब।
0: अरे भाई, इतनी खूबसूरत शाम है, सभा भी नहीं है, चली गई अम्मा के साथ। कितनी समझदार है सभा, है ना।
1: चलिए अब घर लौटते हैं, शाम भी गहराने लगी है।
0: गहराने दो भाई।
1: ओहो,
0: तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: ये बात है,
0: सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा।
1: अरे भाई वाह, डॉक्टर तो तुम बढ़िया हो ही, लेकिन गाते भी कमाल का हो।
0: अरे तो फिर थाम लो हमारा हाथ, जिंदगी भर गाना सुनाएंगे।
1: चलो हटो अब।

0: भाइयों और बहनों, आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का अंतिम दिन था। हमारे मेहमान डॉक्टर लोग बहुत खुश हैं स्वास्थ्य के प्रति हमारे यहाँ की जागरूकता से। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शांति से बैठ जाओ, सब अच्छे से बैठो।
1: भाइयों और बहनों, सेहत के प्रति फतेहपुर वालों का सोच देखकर हम बहुत खुश हैं। अन्य क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी तरक्की के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां।
2: फतेहपुर वालों को मेरा सलाम, और ये पयाम भी कि जब भी आप याद करेंगे हम जरूर आएंगे, ये वादा है हमारा आप सबसे।
0: सेहत का ख्याल रखने की सलाह हम हमेशा अपने गांव वालों को देते हैं, क्योंकि कहावत ही है, एक सेहत हजार नियामत।
1: वाह वाह वाह अम्मा जी, क्या बढ़िया बात कही आपने।
2: स्वस्थ भारतीय स्वस्थ भारत।
3: चलिए अब स्वास्थ्य निर्माण कार्यक्रम के साथ ही साथ लगे हाथ हम सब भारत निर्माण कार्यक्रम की बात भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही भाइयों और बहनों, पहले यही पंचायत भवन में हम आपको भारत निर्माण कार्यक्रम की कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ग्राम सड़क योजना, इन सब के बारे में बता चुके हैं। क्यों, याद है ना?
3: केंद्र सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम की एक योजना गांवों को टेलीफोन के जरिए शेष भारत से जोड़ने के लिए भी है।
0: आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले ना, हम गांव वालों के लिए टेलीफोन एक अजूबा हुआ करता था।
4: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। हो अजामुनिया जी, और सुनो भैया हरो, ई पर हमको एक सोई बात याद आ गई।
0: अच्छा बताओ भैया।
4: बताएं आप?
0: हाँ हाँ भैया।
4: तो शांति से सुनना, बहुत ही मजा आएगा आप। उनको भैया कहा था कि हमारी दादी जो थी बगांव में रहती थी।
5: अच्छा।
4: और हम औरन सब शहर में। हमारे घर टेलीफोन लगने के बाद दादी हमारे पास पहली बार शहर आई।
0: अच्छा
5: अच्छा।
4: दादी ने कहा करो कि बस टेलीफोन के पास बैठ करके बताए बैठ के कुटुर कुटुर पान सुपारी सोई खाई रही थी। इतने में कहा भाओ के टेलीफोन की घंटी अचानक बज जूठी, टिरिंग टिरिंग टिरिंग टिरिंग, और जो घंटी की आवाज सुन के हमारी दादी उतर से भागी है चिल्ला करके के भूत भूत भूत भूत, दौड़ पड़ी और आकर के भैया हमको सोई धल्लाओ। अरे अरे दादी ने हमारी अम्मा को सोई जकड़ दो।
0: अच्छा।
4: ये रे तुमने जे घर में का भूत लगा रखो है। फिर हमने कहा कि भैया दादी को पकड़ के बिठाया, उनको सोई समझाया कि अम्मा जे भूत वो तो नहीं है, जे टेलीफोन है टेलीफोन।
0: लेकिन अब ऐसा नहीं है, आज गांव की दादियां टेलीफोन जानती हैं, केंद्र सरकार के ग्राम टेलीफोन कार्यक्रम के कारण।
6: देहातों, दूरस्थ अंचलों और शहरों के बीच दूरी को पाटने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
3: हम यहाँ हैं और हम में से बहुत रिश्तेदार शहरों में है।
7: भूतों के नहीं भैया, सबाई के हैं।
4: अरे भैया, गांव के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति शहर में जरूर रहता है।
8: अरे हमारी सुनो भैया, हम तो एक बात जाने थे कि भैया उतने शहर में कछु भी हो जाए या इतने गांव में कछु हो जाए, खबर पहुंचने में कई कई दिन लगे रहते थे। हाँ
7: अरे अब तो बस ट्रेन ट्रेन उठाओ चोगा और जेलो खबर।
0: बिल्कुल सही, 50 किलोमीटर हो या 500 किलोमीटर, खबर दे दो और खबर ले लो।
3: हाँ, और टेलीफोन पर दाम भी इतने कम कि हर कोई खर्च कर सके।
7: ए पर भैया तनी एक बात तो बताओ।
3: पूछो।
7: सत्ते पहलवान बताते रहे कि सारे देश में हजारों हजार गांव तो का सारे देश के गांव में टेलीफोन लगवा दिए हैं।
3: हाँ कक्का, कुछ ऐसा ही समझो।
0: बिल्कुल सही, सरकार ने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सेवा यानी VPT के जरिए गांव को शेष भारत से जोड़ दिया है।
4: मनो एक बात है, कछु गांव तो बहुत दूर बसे हैं, अब उनको कहां और कैसे जोड़ा जाए बताओ।
3: देखो, एक होता है डिजिटल सैटेलाइट यानी उपग्रह फोन टर्मिनल।
4: एक बार फिर से अच्छी तरह से समझाओ भैया।
3: देखो, जिस तरह से जोड़ा जाता है उसको कहते हैं डिजिटल सैटेलाइट यानी उपग्रह फोन टर्मिनल। उसकी मदद से जोड़ा जाता है। अच्छा। और हमारे प्रदेश में ही 443 गांव हैं ऐसे जो एकदम दूरस्थ अंचलों में है।
5: भाई एक बात

0: मैं बता दूं आप लोगों को, बचपन में हिंदी की कविता में मैंने पढ़ा था, है अपना हिंदुस्तान कहाँ,
1: बसा हमारे गांव में।
0: हाँ, बसा हमारे गांव में।
2: और इसका क्या मतलब होता है? इमरती मौसी बताएंगी।
3: अब जी सबके सामने हमारी परीक्षा ना लो डॉक्टर, हमसे मस्करी ना करा करो बिल्कुल। हाँ,
4: अरे सुनो इमरती, मतलब जे के असली हिंदुस्तान यहाँ गांव में बसता है।
2: बिल्कुल सही सोहन काका, बिल्कुल सही।
5: अरे काका, तो क्या वहाँ शहर में नकली हिंदुस्तान बसता है, है?
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया।
5: अरे इसका मतलब ये है कि देश की ज्यादा आबादी गांव में बसती है।
2: मतलब ये भी कि गांव की आर्थिक उन्नति के बिना हिंदुस्तान की आर्थिक उन्नति अधूरी है।
3: सही बात कही।
5: और आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है कि जानकारियां फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे।
4: और इसके लिए टेलीफोन बहुत काम की चीज है भैया। खटका दबाओ खबर दो,
6: खटका दबाओ खबर दो।
5: अरे सोहन कक्का, टेलीफोन में खटका?
4: अरे भैया ये बात तो कहने को हमारो ढंग है, अब ऐसे ही समझ लो तुम तो।
5: अरे वाह कक्का, तुम तो बहुत तेज निकले।
0: तो अच्छा, तो भाइयों और बहनों, खटका दबा कर खटाक से भूल मत जाना हम लोगों को, है?
1: हाँ भाइयों, भाई खटका दबाकर खटखटा देना हमारा टेलीफोन, बस बात हो जाएगी।
2: हाँ भाई, रात बहुत हो गई है, अब आज की सभा की कार्रवाई यही समाप्त करते हैं। सब लोग अपने अपने घर चलते हैं ना। नमस्कार भाइयों बहनों। जैन जी,
5: हाँ?
2: काफी अच्छा रहा शिविर, है ना?
5: हाँ, वाकई काफी अच्छा रहा,
2: बहुत अच्छा रहा।
5: तीन युवा डॉक्टरों ने केवल तीन दिन में इतने सारे लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर डाली, कमाल हो गया।
2: बिल्कुल सही
0: भाई, कमाल तो हमने आप लोगों का आज की मीटिंग में देखा। हाँ
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर प्रसून, आम लोगों को उनकी जबानी में इतनी आसानी से कैसे जानकारी दे देते हैं आप लोग।
0: अरे अरे, असली कमाल तो ये है, ये मोटरसाइकिल। हाँ,
2: मोटरसाइकिल पर रामदयाल मम्मा बैठे थे शायद।
0: अच्छा,
2: 65 की ऊपर की उम्र है।
0: हाँ?
2: पर क्या तनकर बैठे थे बाइक पर।
0: वाह, सही बात है भाई।
5: अरे भाई, अखाड़े के पुराने पहलवान है, कसरती बदन है उनका पूरा।
2: और दांत ऐसे मजबूत हैं कि पूरा का पूरा गन्ना दांतों से छील कर खा जाते हैं। हाँ।
5: बिल्कुल सही कहा तुमने जमुनिया।
7: अरे अरे, कहा होगा भैया, अभी तलाक आप और उन घर नहीं पहुंचे हैं, क्या बात है? अरे चलो चलो, आप बैठो बैठो, हमारे ट्रैक्टर में बैठो।
2: हाँ,
7: फिर सनी सब और उनको घर छोड़ देंगे। हाँ,
2: आओ भैया, बहुत समय बाद में ट्रैक्टर में बैठूंगी।
7: हाँ भैया।
2: पर वो प्रसून और सबा, वो तुम लोग?
0: अरे हम
1: जरूर बैठेंगे,
0: जरूर बैठेंगे। हाँ, और क्या भाई, जिंदगी में पहली बार ट्रैक्टर में बैठेंगे हम।
1: डॉक्टर प्रसून, मैं भी पहली बार।
2: हाँ, तो चलो आ जाओ जल्दी।
0: हाँ, बिल्कुल
2: चलो।
7: और भैया लाल सिंह जी,
8: लाला राम जी।
7: हाँ अच्छा, लाला राम जी, गलती सो हो गई, माफ करना। तुम आओ निकालो जो मोबिल आइल, और उसमें सुनाओ सब और को गाना जो हमारा ट्रैक्टर चल रहा है।
8: हाँ,
7: आओ
8: सुनो
2: आराम से, आराम से।
7: अरे यार, गाना तो बजाओ।
8: बजा रहा।

0: अगले दिन रूपस अपने दोनों डॉक्टर मित्रों के साथ लौट जाती है अपनी ड्यूटी पर। सरपंच जमुनिया और जयंत भी लग जाते हैं फिर से अपने काम में। अगले अंक में आप सुनेंगे फतेहपुर गांव में और जो कमाल होगा उसे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 30वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में आज से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पहले दिन आज शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में उज्जैन की शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर से प्रदेश की पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं के लिए जुलाई माह का अनुदान 66,73,00,000 रुपये से अधिक DBT के माध्यम से गौशालाओं के खाते में अंतरित करेंगे। PM विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत अनिवार्य सुरक्षा राशि सीमा के लिए मासिक वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO की वित्तीय सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार के 13 साल बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि मई 2013 में बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। इसमें 27 लोग मारे गए थे। और पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान

महिला सभा कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्नेहिल अभिवादन। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करेंगे बेहद संवेदनशील है, जो हमें जीवन की उस सच्चाई से सामना कराता है जिसे हम अक्सर स्वस्थ रहते हुए भूल जाते हैं। सखियों, हम बात कर रहे हैं विश्व मरीज सुरक्षा दिवस की। किसी अस्पताल के शांत गलियारे में किसी बिस्तर पर लेटा हुआ एक मरीज, उसके पास बैठा हुआ कोई अपना और आंखों में एक ही उम्मीद, सब ठीक हो जाएगा। सखियों, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती और बीमारी केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती, वह मन को भी अपने आगोश में ले लेती है। सखियों, किसी भी मरीज को दवाइयों के साथ साथ आवश्यकता होती है अपनों के साथ की, डॉक्टर के विश्वास की, नर्स की सेवा और समाज के संवेदनशील व्यवहार की। सखियों, विश्व मरीज सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1992 में की गई थी। सखियों, विश्व मरीज दिवस हमें याद दिलाता है कि मरीज केवल एक बीमार व्यक्ति या एक मेडिकल रिपोर्ट का नाम नहीं है, बल्कि वह भावनाओं, उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ एक इंसान है। सखियों, मरीज को इलाज और दवा के साथ चाहिए अपनों का स्नेह। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन उसके मन को मजबूत बनाकर रखना हमारे हाथ में होता है। सखियों, कभी मरीज के पास बैठकर दो शब्द प्यार से कह देना, कभी उसकी बात ध्यान से सुन लेना, कभी उसे यह विश्वास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए सखियों, कई बार ये छोटे छोटे शब्द भी मरीज के लिए किसी बड़ी दवा से कम नहीं होते हैं। सखियों, पहले हमारे घर परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर हम बहनों के ऊपर आती थी। माँ हो या बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो। सखियों, अब समय बदल रहा है। घर परिवार में सभी सदस्य इसकी जिम्मेदारी को समझने लगे हैं। लेकिन सखियों, यहाँ एक बात और जरूरी है, मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति की भी देखभाल की उतनी ही आवश्यकता है। मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति भी थक जाता है, उसे भी आराम और भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। इसलिए परिवार में सभी की जिम्मेदारी साझा होना चाहिए। सखियों, मरीज को हमेशा सही चिकित्सक के पास ले जाएं। मन से घर पर ही इलाज शुरू ना करें, डॉक्टर की सलाह को अवश्य माने, दवाइयां समय पर मरीज को दें, जांच नियमित कराएं, परिवार का भावनात्मक सहयोग बनाकर रखें, क्योंकि बीमारी का उपचार केवल दवाइयों से नहीं, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भी मजबूत होता है। सखियों, एक छोटी सी बात और, अगर आपके आसपास कोई मरीज है तो आज आप उसके पास कुछ पल बैठिए। जरूरी नहीं बहुत देर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, बस इतना कह दीजिए, आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। सखियों, संभव है कि आपका ये छोटा सा वाक्य उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। साथ ही अगर आज आप स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को भी अनदेखा ना करें। आप भी समय पर भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें, किसी भी बात का तनाव ना लें। छोटी छोटी तकलीफों में डॉक्टर की सलाह लेने में संकोच ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य का मूल्य तब समझ आता है जब हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए सखियों, विश्व मरीज सुरक्षा दिवस पर हम बीमारी से ज्यादा मनुष्य को देखें, रिपोर्ट से ज्यादा उसकी भावनाओं को समझें और दवा के साथ दुआ और स्नेह भी दें। और आज विश्व मरीज सुरक्षा दिवस पर हम आप सभी से यह भी कहना चाहते हैं कि दर्द से मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक नया सवेरा लाना है। मरीजों की सुरक्षा और सेहत का हर वादा हमें निभाना है। ना हो कोई भूल इलाज में, अब ना कोई लापरवाही हो, हर अस्पताल को सेवा और जीवन का सुरक्षित धाम बनाना है। सखियों, मरीज को और मरीज की देखभाल करने वाले को मधुर संगीत सुनाकर देखभाल की जाए तो कुछ हद तक तनाव को कम किया जा सकता है। तो चलिए हम और आप भी सुनते हैं एक गीत।

0: सखियो, अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। इस चरण में सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय है आधुनिक जीवन शैली और योग। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश कुमार और आपसे बातचीत करेंगी सरला मिश्रा। तो सखियो, सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोता बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो चुका है और हमारे भारत देश ने जो योग का परचम पूरे विश्व में फहराया है वह अद्वितीय है, पर अक्सर लोगों में धारणा ये रही है कि योग केवल योगियों या साधकों के लिए होता है, परंतु अब भारत ने इस विधा को आम आदमी के लिए भी प्रस्तुत कर दिया है। चलिए, जब योग हमारे जीवन में आ गया है तो इससे जुड़ी कुछ बातें जानने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के योग विभाग के योगाचार्य डॉक्टर राजेश पांडे जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और जैसा कि हम जानते हैं सर कि आज का जो हमारा जीवन है भागदौड़ और व्यस्तता से भरा है, बहुत ही तनावपूर्ण हमारी जीवन शैली है, और चूंकि योग अब हमारे जीवन में आ गया है तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है?
2: इसमें सबसे अहम बात समझने की यह है कि जब भी हम कोई चीज़ कहते हैं कि सब लोग क्यों नहीं अपना रहे, है ना, तो असल में 100% कोई भी चीज़ सब लोग नहीं करते। कौन करते हैं? जिसको आवश्यकता है। आकाशवाणी से जिसको लग रहा है कि इससे हमको लाभ होता है वो उसको करता है, छोड़ता नहीं है। मैं भी सुनता हूँ आकाशवाणी के कार्यक्रम। वैसे ही आप अगर योग को लो तो योग की जिनको आवश्यकता है वो तो जागरूक हैं और कर भी रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जिसके पास जितनी सुख है, सुविधा है, संपन्नता है, उसको उतना लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन आप कहो एक सामान्य मजदूर है जिसको मजदूरी सुबह से शाम करना है, उसको आवश्यकता ही नहीं है उसकी उस तरह से, तो वो उसको नहीं करता। तो सब चीज़, सब हर एक कोई भी चीज़ है वो सबके लिए हमेशा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, 99% ले जा सकते हैं और 50% 60% से तो ज्यादा ही लोग इस पे
1: नहीं। तो जब हमारी आवश्यकता होगी तभी हम इसमें अपनाएंगे क्या?
2: आवश्यकता का मतलब यह है कि बहुत तरह से आवश्यकता आदमी को पड़ती है। आदमी को ऐसा लगता है कि हमें मेंटली कुछ पीस होना चाहिए, आदमी को ये लगता है कि हमारा जीवन बढ़िया चलना चाहिए, संबंध लोगों से, रिलेशनशिप अच्छी होना चाहिए। तो जहां जहां उसको जैसी जैसी जो चीजें लगती हैं और उसको लगता है कि ये हमारे लिए काम कर सकती है तो वो उसको अपनाता है। योग में सब चीज है, पूरे जीवन को व्यवस्थित कर सकता है
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जैसे जैसे लोग योग के अन्य आयामों को, अभी तो केवल एक्सरसाइज के रूप में और बीमारी को ठीक करने के रूप में ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब वास्तविक रूप को योग के लोग समझें तो उनको पता चलेगा कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पूरे जीवन में योग का कहीं ना कहीं उपयोग हो सकता है। और ये जानकारी जब लोगों तक भरपूर पहुंचने लगे, लोग बिल्कुल पूरी तरह से उसको समझने लगे, जैसे आकाशवाणी के माध्यम से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, अन्य माध्यमों से कार्यक्रम लोगों तक पहुंच रहा, उनको वास्तविक स्वरूप जब पता चले तो फिर वो कहें कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है। बिना आवश्यकता के तो कोई उसको अपनाने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। आवश्यकता पहले महसूस होना जरूरी है और वो जानकारी होगी तो आवश्यकता महसूस होगी।
1: अच्छा, बिना आवश्यकता के भी तो हम इसे अपने जीवन में अपना सकते, एक दिनचर्या में शामिल कर सकते।
2: हाँ, जो बीमार नहीं वो भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए शामिल कर सकते हैं कि असल में योग एक जीवन शैली है। योग कोई एकाध क्रिया का नाम नहीं है, योग एक दृष्टिकोण है, योग एक जीवन शैली है। तो जब आप इस तरह से योग को लो तो फिर उसको तो आप 24 घंटे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या आई, मान लो आप हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर ये बातचीत हो रही है इसमें कोई समस्या आए तो उसको समाधान करने के लिए क्या करोगे? तो जो आप करोगे उसको कहते हैं व्यक्तिगत व्यवहार आपस में। और व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए योग में नियम बताए गए हैं, उसमें 5 उसके अंग होते हैं। अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह बताए, उसमें नियम में 5 अंग, वो व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हैं। किसी दूसरे के साथ आप व्यवहार करते हो उसके लिए यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह वगैरह। और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, बड़े बड़े शब्द जरूर लगते हैं लेकिन जब इनको कोई समझे तो बहुत सहजता से इनका पालन कर सकता है और सामान्य व्यवहार में भी वो उपयोगी हो सकती है। तो सुबह से शाम तक आपके जीवन में उसको शामिल कर सकते हैं। आसन प्राणायाम तो 24 घंटे नहीं कर सकते
1: बिल्कुल। जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है तो जैसा कि आपने बताया उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरह हैं, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आसन और प्राणायाम कर लिया तो यही हमारे जीवन के लिए सफिशियंट है, तो क्या ये सच?
2: ये पूरी तरह से सच नहीं है। आसन प्राणायाम बिल्कुल फायदा तो करते हैं। असल में पतंजलि ने 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। 8 अंग

0: में जो बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसको लोग सामान्यतः योग समझते हैं, वो है आसन प्राणायाम। तो आसन प्राणायाम करने से भी फायदा है। आप आसन से शुरू करो तो भी 8 के 8 अंगों में कहीं ना कभी पहुंचोगे, प्राणायाम से शुरू करो तो भी कभी ना कभी पहुंचोगे, लेकिन यदि आप 8ों पे ध्यान दो तो जितना समय इनसे पहुंचने में लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। मैक्सिमम लाभ आपको 8ों अंगों के पालन से ही मिलेगा। अगर केवल आप आसन और प्राणायाम लेते तो बहुत दिन तक वो केवल इतना होगा कि ये एक्सरसाइज मात्र है, फिर आपके व्यक्तिगत व्यवहार का नियंत्रण नहीं हो सकता, सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण नहीं हो सकता है, और भी अन्य प्रकार के फायदे नहीं हो सकते, मानसिक तनाव से छुटकारा नहीं हो सकता है वगैरह,
1: जो बहुत जरूरी है आज के समय पे।
0: अगर आप कहते जीवन शैली और सबके लिए उपयोगी कैसे हो, तो सबके लिए उपयोगी में पूरा योग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना
1: बहुत
0: और उसको फॉलो करना आवश्यक। बिल्कुल, समझ अगर कोई ले तो फॉलो करेगा ही।
1: सर एक चीज ये बताइए कि मनुष्य के जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत से व्यायाम हैं, अभ्यास हैं, तो योग के अभ्यास में क्या अंतर?
0: योग में असल में क्या है कि जो आप अभ्यास करते हो, बहुत प्रकार के अभ्यास हैं, आसन के पूर्व के बहुत सारे अभ्यास हैं, तो उनको जैसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम की गति धीमी तेज सब तरह से की जा सकती है। जो व्यक्ति जिस स्टेज में है, जिस तरह का है, जिस आयु वर्ग में है, उसको उस तरह से उनको कराया जा सकता है। तो योग का किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे वो बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे किसी आयु वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी समाज व्यवस्था का हो, किसी देश का हो, वो सबके लिए उपयोगी हमेशा हो सकता। लेकिन जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए आपको श्रम बहुत लगता है, ताकत ज्यादा लगती है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल आपको जब आपका शरीर में बल है तब आप उसको कर सकते हो और अच्छा गठन शरीर का बना सकते हो। लेकिन जब आयु आपकी समाप्त हो गई तो वो अभ्यास अगर आप नहीं करते तो भी नुकसान होता है और करते हैं तो भी नुकसान करते हैं। योग में ऐसी स्थिति नहीं है। योग में आप कभी भी किसी भी स्थिति में ये अभ्यास कर सकते हैं। इवन कई लोग ऐसा कहते हैं कि भोजन के उपरांत आसन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आसन नहीं करना चाहिए, एक आसन है वज्रासन, उसको करते हैं, लेकिन आप 10 मिनट 20 मिनट बाद अगर थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं, हल्का भोजन किया है, तब भी आप हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, यदि आपकी रूटीन में वो कहीं चूक गया है। भोजन के बाद नहीं करना चाहिए, पर आप सूक्ष्म व्यायाम किसी भी समय में कर सकते हैं हल्के ढंग से। और अगर उसी सूक्ष्म व्यायाम को आपको एक बहुत हैवी व्यायाम के रूप में करना है तो शक्ति चालन के बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम है, उनको आप करो। जैसे चक्की चलाना एक अभ्यास है, नौका बनाना एक अभ्यास है, तो उसमें जब आप करते हो, टाइम दे के करते हो, तो उसमें हैवी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसी को आप बहुत कम समय के लिए और हल्के तरीके से करो तो किसी के लिए भी उपयोग और कभी भी उपयोगी हो।
1: योग में जब हम शुरुआत करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। हाँ, ये क्यों करते हैं?
0: ये इसलिए करते हैं कि असल में क्या है, आसन में आप देखते होंगे कि शरीर के सब अंगों में अगर आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप प्रॉपर आसन कोई कर भी नहीं सकते। तो जैसे आप पद्मासन ही लगाते, सुखासन में बैठते, आपको पांव दर्द करने लगा, क्यों होता है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए पूरे शरीर में सूक्ष्म व्यायाम की जरूरत होती है। सूक्ष्म व्यायाम के करने से दो फायदा होते हैं। एक तो पहला फायदा यह है, रक्त का जो संचालन है आपका पूरे शरीर का, ब्लड सर्कुलेशन, वो बढ़िया हो जाता है, तो आपको शरीर में हल्कापन लगता है। फिर दूसरा, प्राणवायु जो आपकी है, प्राण ऊर्जा, उसके भी कहीं ना कहीं आपको बाधा पहुंचती रहती है भीतर। तो अगर आप सूक्ष्म व्यायाम करते हो श्वास प्रश्वास के साथ, तो उसमें भी आपको लाभ होता है, आपके प्राण ऊर्जा के भी बंधन खुलते हैं और आपको हल्का महसूस होता है, धीरे धीरे आप अच्छे आसनों के लिए भी तैयार।
1: सर ये बताइए कि मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है, ये तो हम जानते हैं, योग उनसे कैसे छुटकारा दिला सकता है?
0: जैसे अब अष्टांग योग की बात करें तो दो उसके भाग हैं, एक को कहते हैं अंतरंग योग, दूसरे को कहते हैं बहिरंग योग। अंतरंग योग शुरू होता है धारणा, ध्यान और समाधि के विषय के रूप में। धारणा का संबंध आपके मन से है, ध्यान का संबंध आपकी बुद्धि से है, और समाधि का संबंध आपकी चेतना से है। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ध्यान का अभ्यास और धारणा का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर आप ये नियमित रूप से किसी से अच्छे से सीख करते हैं तो उससे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, बहुत क्लियरली अनुभव आता है उसको।
1: ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। और ये बताइए कि योग, ऐसा कहते भी हैं कि कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, राजयोग भी है और हठ योग भी है, तो इतने सारे योग के प्रकार हैं जब, तो सामान्य व्यक्ति इनमें से किसे चुने?
0: पहली बात यह है कि अष्टांग योग में सारे योग लगभग सम्मिलित हैं, कर्म योग भी शामिल है, ज्ञान योग भी शामिल है, भक्ति, वो कभी बाद में इस पे विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन ये शामिल है। लेकिन अगर जैसे किसी की कर्म करने में बहुत ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा उसका मन है उसमें। कर्म की प्रधानता से कोई व्यक्ति है या बुद्धि की प्रधानता से जीवन जीता है या फिर भाव की प्रधानता से जीता है, तो अलग अलग प्रधानता से जीने वाले लोग, जिसके जैसे इमोशनल व्यक्ति है तो उसके लिए भक्ति लोग बहुत काम करता है। कोई अगर बड़ा बौद्धिक और तार्किक व्यक्ति है तो उसके लिए ज्ञान योग बहुत काम करता है। जिसकी व्यवहार में बहुत बुद्धि है कि नहीं व्यवहार

0: होनी चाहिए, कर्म के बिना कैसे कुछ होगा। तो कर्म को फिर कर्मयोग की तरह से अगर फॉलो करें तो उससे लाभ होता है। अष्टांग योग में ये सारी चीजें लगभग शामिल हो जाती है। तो इसलिए अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो अष्टांग योग को शामिल करें और किसी से समझें सीखें तो उससे बहुत लाभ।
1: तो सर आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें आसन प्राणायाम भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसके और भी जो अंग है उनको भी हम अपने जीवन में उतारें, उनको शामिल करें, तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा।
2: सखियों, हम आशा करते हैं आपको यह भेंटवार्ता पसंद आई होगी। आपको इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार, विषय था आधुनिक जीवन शैली और योग। आपसे बातचीत कर रही थी सरला मिश्रा। सखियो, अब हम बात करेंगे उस चुनौती की जिसका असर हमारी धरती, हमारे जीवन और हमारे भविष्य पर पड़ रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन। सखियो, बदलता मौसम हमें चेतावनी दे रहा है कि अब भी प्रकृति को सुरक्षित नहीं रखा तो भविष्य में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सखियो, हम सब महसूस कर रहे हैं कि ठंड और बारिश से ज्यादा हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है। सखियों, इस बदलती जलवायु से हम इस धरती को और अपने भविष्य को बचा सकते हैं। इसके लिए हम सबको बस इतना ही करना है कि प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा हम हरा भरा बनाएं, यानी अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। बिजली का केवल जरूरत के समय ही हम उपयोग करें। आवश्यकता न होने पर घर हो या ऑफिस, बिजली के बटन बंद रखें। सखियों, पानी की हर एक बूंद बचाने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सखियों, प्लास्टिक का उपयोग हमें पूरी तरह से बंद करना ही होगा प्रकृति की रक्षा के लिए, और छोटी दूरी के लिए हम अगर पैदल जाएं या साइकिल का उपयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और प्रकृति भी खुशहाल रहेगी। और जब प्रकृति की खुशहाली की बात हो तो क्यों ना ये गीत सुन लिया जाए।
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

सखियों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हो गए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और उसके बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं मिथिलाल चक्रवर्ती और सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भजन। शुरुआत करते हैं देवी गीत से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ये कार्यक्रम था आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले जो हम आपको गीत सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम है गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्य कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कब तक चुप रहूंगी से, और आवाज़ है मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, समीर ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, 2:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से प्रधानमंत्री श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में देश का मान विश्व पटल पर बढ़ता जा रहा है। इस खास मौके पर इंदौर में स्वामित्व योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में एक साथ दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शिल्पकारों

0: कारीगरों और श्रमजीवी बंधुओं को विश्वकर्मा जयंती की बधाई देते हुए उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे इंदौर और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री नवीन दोपहर इंदौर पहुंचकर गांधीनगर ग्राउंड में स्वामित्व योजना के तहत राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे उज्जैन में रामघाट पर मां क्षिप्रा की आरती में शामिल होकर सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित करेंगे। श्री नवीन आज भजन संध्या में भी शामिल होंगे और कल महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के बाद इंदौर से पंजाब के लिए रवाना होंगे। उज्जैन में आज से 3 दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 अवंतिका शुरू होगी। देवास रोड स्थित गीता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 24 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1600 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत करेंगे और वे इस दौरान युवाओं को संबोधित भी करेंगे। धर्म संसद में 3 दिनों के 8 सत्रों में धर्म, भारतीय संस्कृति, चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और समकालीन विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में करीब 300 विद्वान, शिक्षाविद, धर्माचार्य और विशेषज्ञ युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को समापन सत्र में शामिल होंगे। प्रदेश का बालाघाट जिला कभी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब सुरक्षा अभियानों, आत्मसमर्पण और पुनर्वास के प्रयासों के बाद बालाघाट में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं बालाघाट से हमारे संवाददाता।
1: स्टार्ट कर सके
2: आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से मैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो कभी नक्सली दहशत का केंद्र माना जाता था, अब शांति और सुरक्षा की नई इबारत लिख रहा है। वर्ष 1990 में शुरू हुए इस खूनी संघर्ष में 3 दशकों तक पुलिस और जनता ने भारी नुकसान झेला, लेकिन हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं ने नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी और अब प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा।
1: जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लाएंगे, तो उसके तहत एक बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पे काम हुआ। जो मध्य प्रदेश की रिहेबिलिटेशन, सरेंडर एंड रीइंटीग्रेशन नीति है, उसके तहत कई प्रावधान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो भी आत्मसमर्पित नक्सली है उसको एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। जितना भी उस पे इनाम है या 5 लाख रुपए, उसमें से जो भी अधिक वैल्यू होगा वो उसको दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने जीवन को फिर से स्टार्ट कर सके।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
0: और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कटनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और सतना में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 7,744 परिवारों के लिए प्रशासन ने 3,74,40,300 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: For September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: 2:00 में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
6: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
7: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
8: Draining the swamp that provided an
2: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले दिल फिल्म का एक गाना। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। समीर ने इस गाने को लिखा है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सिंहपुर बड़ा से लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा इस गाने के लिए पसंद किया है। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इसी गाने के लिए फरमाइश आई है। सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, संदीप गुगलानी, इन्होंने ये पत्र लिखा है। कहाँ से लिखा है? ये लिखा है करनाल से। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सलरा मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आंधी से ही। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गुलजार ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छपड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दिशा रूही और लबी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और किश श्रीवास्तव ने। इसी गाने के लिए फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है कालका से लिखने वाले हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी की फरमाइश में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंधी का ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं, गुलजार ने इस गाने को लिखा है और आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।
2: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपका कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। अगला गाना हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है धामणी मनोरा से। लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, सती संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवजल डेरे और अनुत्तर डेरे ने। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़ टुक टुक, और आकार हाइट्स से बहादुरा नागपुर से। लिखने वाले हैं वैशाली, शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी ध्वनि गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, इनकी पसंद से हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी का ये गाना।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फ़कीरा, फिल्म में लता मंगेशकर को गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सत साहिब रेडियो श्रोता संघ नानोरा महोबा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी आराधना, सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है डोंगर गाँव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी बेबी, अनिष्का तन्मय गजबी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं ध्रुव कुमार, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणिता गिरी, शैलेशपुरी, सोनमपुरी, धनुषपुरी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

और आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तकदीर का एक गाना। तकदीर के बाद में हम अगला गाना ले रहे हैं जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम है आवारगी। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है।

0: आवारगी के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश भेजी थी तुलसी राम, घनश्याम, त्रिवेणी प्रसाद, राहुल सागर, राजेश पंडित, खालिद खान, राम स्वरूप, मिलन, निखिल और इन सभी ने फरमाइश भेजी थी शिवलोक ग्रीन भोपाल से। इसी के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप तो सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने को हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का। बस चंद सेकंड बाद सुनेंगे आप इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख को साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे इंदौर और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री नवीन इंदौर गांधीनगर ग्राउंड में स्वामित्व योजना के तहत राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन में आज से 3 दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 अवंतिका शुरू होगी। देवास रोड स्थित गीता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 24 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1600 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। और इंदौर में सेंट्रल जीएसटी विभाग ने जेबीएम ग्रुप के 3 ठिकानों पर एक साथ सर्चिंग शुरू की है। विभाग की टीम ने कलेक्ट्रेट के पास स्कीम नंबर 104 और एस्कोर्स स्थित प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर दस्तावेजों, स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड और कंप्यूटर में दर्ज कारोबारी डेटा की जांच शुरू की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम 5 डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण इस तरह है। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। शाम 5:33 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और शाम 6:00 का समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम का। फिल्म संगीत का आनंद आप 6:30 पर भी ले सकते हैं। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। रात 8:00 आप सुनेंगे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बात एक रात की। इस फिल्म का आवाज मोहम्मद रफी की है, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, एसडी वर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

ऐसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले।

अगले गाना है फिल्म सरगम का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और ये गीत आपकी नजर।

अगला गाना है फिल्म सांझ और सवेरा का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शैलेंद्र ने लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

एक दूजे के लिए, ये फिल्म का नाम है। इसमें जो गाना लिया है उसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मिलाप से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, नक्श लालपुरी ने इस गाने को लिखा है, ब्रजभूषण ने संगीत तैयार किया है, फिल्म का नाम है मिलाप।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोने की चिड़िया फिल्म का एक गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, ओपी नैयर का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के एक लेख को साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन अक्सर बड़े सपनों को साकार करने के अवसर और रास्ते छूट जाया करते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति कैसे बदली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत 2,46,297 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। और मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। यह टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में शनिवार से शुरू हो रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नाटक सफेद खून, लेखक हैं आगा हश्र कश्मीरी और प्रस्तुतकर्ता राकेश डोंडियाल।
1: प्रस्तुत है नाटक सफेद खून, मूल लेखक आगा हश्र कश्मीरी, रेडियो रूपांतरण किया दिनेश राय ने और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: बादब बामुलाहिजा होशियार निगाह रूबरू आलम पना शहंशाह मुल्क जिल्ले इलाही खाकान दरबार शाही में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
1: माँ बदौलत अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ इंसान को बुढ़ापे का खौफ और मौत का अंदेशा घेरने लगता है। लिहाजा हम पर यह लाजिम है कि नाइत्तेफाकी, जंग और खूनरीजी के खतरों से बचाकर हुकूमत का ताज अपने हाथों किसी हकदार के सर चढ़ाया जाए। अल्लाह ताला ने हमें 3 बेटियों से
2: अब बिहार में 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

0: इजहार करती है।
1: जहाँ पनाह, आपकी ये हकीर बेटी महापारा सिर्फ इतना अर्ज कर सकती है कि अगर ये सच है कि समंदर का पानी प्याले में नहीं समा सकता, तो इसे भी सच जानिए कि आपकी बे इंतहा मोहब्बत का इजहार जुबान और कलाम के जरिए नहीं हो सकता। महापारा की जुबान इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती कि जितनी मोहब्बत आपकी इस बेटी को आपसे है, उतनी कोई बेटी अपने बाप से न रखती थी न रखती है।
0: शाबाश महापारा, जो बात हमारे कान सुनना चाहते।
2: विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यकीन मानिए हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियाँ हम सभी के साथ आज शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में। और हर बार की तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है। आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत ज़रूर आपकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना? किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई? कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए?
1: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो, कि क्यों फ़ौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फ़ौज ज्वाइन करने के लिए। तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फ़ौज, डिफेंस फोर्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फ़ौज ज्वाइन करने के लिए। ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फ़ौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी। उसके बाद मेरे पिताजी भी फ़ौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया, बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी। तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल

0: यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही, और इसलिए यू नो इट वाज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा. सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप ज्वाइनिंग.
1: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड कर्नल विवेक चौहान जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
0: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना. मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे, और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था. यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो. सो मैं शैतान बच्चा था. पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिन्ड हो गया और थोड़ा शांत हो गया, बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबडी.
1: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया.
0: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा. मैं NDA से हूँ और फिर IMA से पास आउट हुआ, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में नोन हैं, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इनटू बॉयज इनटू मैन, एंड डिसिप्लिन इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट. एंड यू नो वंस जैसे मैंने कहा, एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये डिसिप्लिन की बाउंड्रीज थी इससे जो है आई हैव बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड और पॉसिबली अ बेटर पर्सन.
1: बिल्कुल, आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेज से पूरी तरह से बदल देती है, हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है. जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है.
0: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना. दी ट्रेनिंग अकेडमीज ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर अलग बैकग्राउंड से लेते हैं, एंड दे ट्रेन यू इन टू द फाइनेस्ट दैट द कंट्री प्रोड्यूसेस, समटाइम्स विद पेन, समटाइम्स विदाउट पेन, बट द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड.
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से. तो पहले NDA, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ जहाँ पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने ज़रूर उसको एंजॉय किया. और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे, भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेज ज्वाइन की, भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर वो जो अंदर का बच्चा था ना वो जीवित रहा, और वहाँ पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया. तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया?
0: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया. जब हम NDA गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम IMA पहुँचे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हमें ज्वाइन किए थे. सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है, एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन IMA. नॉट दैट NDA में नहीं था, बट कंपैरेटिवली IMA वाज अ मच बेटर टाइम.
1: NDA आप एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप CDS का एग्जाम देने के बाद, या फिर वो जो NDA से जाकर फिर IMA ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं.
0: हाँ जी.
1: जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेज लाइफ ना देखी हो.
0: बिल्कुल.
1: एक बात और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अब मैं सुन रहे होंगे, मुझे चाहते हैं उनके बच्चे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म्ड फोर्सेस जाता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है. हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहाँ जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल. आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है वहाँ लाइफस्टाइल इतनी ईजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन. तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकल कर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांत शालीन ऑफिसर बन गया?
0: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था. लेकिन एक ट्रांजिशन है, यू नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम. सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट, दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यूनिक ट्रांजिशन, एंड दैट आई थिंक इज व्हाट ट्रेनिंग टीचेस यू ओवर फोर इयर्स, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, और आप कैसे जो है प्रेशर को सहते हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं. सो आई थिंक दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन यू नो बिफोर ज्वाइनिंग द फोर्सेस एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द फोर्सेस.
1: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ. मैं बहुत समय से, जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी और मेरे दोस्त जब इंटरमीडिएट एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो काफ़ी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अंतिम पग इंटरमीडिएट एकेडमी देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है. अंतिम पग क्या है?
0: सो अंतिम पग इज दैट फाइनल स्टेप विच चेंजेस यू फ्रॉम अ केयर फ्री बिंदास अंडर ट्रेनी टू अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग ऑफिसर. कहने को तो वो एक सेकेंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड. यू नो, आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में, जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं.
1: वाह, क्या बात है. उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया. केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर ये गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम. और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं. और जब एक ऑफिसर की दिल की बात ये गाना कहता है तो समझ जाइए उसके लिए, उसकी सर्विसेज, उसके लिए सेना के क्या मतलब है.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन्ड हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो ज़िंदगी जैसे 360 डिग्रीज टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो दैट अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे बिकॉज यू गेट कमीशन्ड एट 21, 22, 23 ईयर्स ऑफ एज, सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे, रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हो, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं। सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योरसेल्फ इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था।

0: And now you come into a situation where there is a lot of uncertainty. Uncertainty ke saath mein responsibility for 30, 35, 40, 50 people. You have to make decisions. You have to, do multiple things. You have to take risk because these are lifelong associations. So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders. And this is a very interesting, very painful and very necessary stage. Aap tabhi jab aapke soldiers aapke saath aram se baat kar sakte hain, they can approach you, aapke saath train kar sakte hain, aapke saath kha sakte hain, pee sakte hain, that is the day you truly become an officer.
1: Aur mujhe lagta hai ki shayad ye wo ek kshan hota hoga jahan par aap swayam se ladte hain. Maidane jang mein ladna to abhi baki hai. लेकिन यहाँ सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ है।
0: बिल्कुल, because you have to lead, you have to get up and get going, है ना? वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो ज़माना चला गया, वो time चला गया, and therefore you have to fight against yourself to prove that you are as good as the troops that you lead, जिनकी command आपको दी गई है, so ये पहली लड़ाई आपके साथ है, because that hard work takes effort.
1: अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है. और अक्सर जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं तो ये मात्र शब्द नहीं रह जाते, इनका मायना, इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. अगर मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूंगी तो बस वो यही कहेंगे, नाम नमक निशान. नाम नमक निशान क्या है?
0: सो दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रुप मेरी यूनिट के ट्रुप्स थे वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे. तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सब के से आए हुए थे. नागास थे, मीज़ोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे. एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है उसके बीच में देर इज़ नो अफिनिटी, देर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है. लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के बनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए, यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा ये फौज आपको सिखाती है. देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आँच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए. आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले. दैट इज़ वाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप. टुकड़ी वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए, ठीक है? वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो. एंड इफ़ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो, जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पर आँच ना आए, ठीक है? सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड देयरफॉर नाम नमक निशान.
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं. अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में. सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पर टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं. तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ, और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं. तो डेढ़ दो साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं, अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है. और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई. एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन. ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है. उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वॉज़ इन अ मल्टी नेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे। तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहां आपको दूसरे की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा।
0: सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यू नो दिस वॉज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो, सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, एंड यू नो यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, its capabilities and what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all social events, games, mm-hmm. sports, isme bhi interaction hota tha, so this was a very unique experience, and I think this kind of a cross cultural communication is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
1: बहुत खूब, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में, एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज खूब दबा के डांस और मज़े लेते थे।
1: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब छम्मा छम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें छम्मा छम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ जी, बाद में भी मिशन जब हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफ़ी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटिजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपके यूएन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और इसको खूब
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, بہت بڑا ایک دن ہوتا ہے, لیکن اس ایک دن میں پل کیسے چرائے جائیں وہ آپ ان سے سیکھیے. زندہ دلی اگر آپ کو سیکھنی ہے تو آپ ہمارے بھارتیہ سینک کے نوجوان یا پھر وہ آفیسرز جو ریٹائر ہو گئے ہیں, جو کاریرت ہیں, بس انہوں نے ایک ہی بات جانی ہے کہ جیون امولیہ ہے اور اس جیون کو نا آپ جس طرح سے جس شدت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جیے, لیکن

0: वेलकम बैक संदेश टू सोल्जर्स, आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान। कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है। ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, थोड़ी गलती से हो गया। तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे। तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज़ हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे। सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज़ हो गए। तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ। जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो। तो वो आज ही निकालो का इफ़ेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट ईजी टू गेट। तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुँचो। तो रीचिंग द्रास इन इट्सेल्फ वॉज एन एडवेंचर। वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो। लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए, 3-4 दिन लगे पर हम पहुंच गए। एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम। आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे साथी वहाँ आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है। सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू all the soldiers of the Indian Army who did a very impressive job, and जो लोग वहाँ जाते हैं they will understand कि high altitude में उन heights पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है। वहाँ का एक interesting वाक्या सुनाता हूँ। तो मैं पहुँच गए हम, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग locations में, तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर cover नहीं था क्योंकि वो हमारा equipment वैसा था। तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह जो सरदार जी थे, अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे, तो मैंने भी हेलमेट पहना होता, फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी हुई थी। अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता। फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ़ देखता और मैं देखता उसकी तरफ, तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ, फिर वही कहानी उल्टा, फिर बैरे पहनो फिर हेलमेट। सो दिस वॉज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स ऑल्सो।
0: पर ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है।
1: या आई थिंक दिस इज द इथोस विच वी आर ब्रॉट अप विद, है ना। एंड व्हाइल इट वाज नॉट फनी दैट टाइम, टुडे इन हाइंडसाइट आई कैन लाफ ओवर इट एंड

0: जगतार
1: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे उनको उनको ज़रूर हंसी आती होगी। लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग कहूँगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है, और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन में फतह तो हासिल करनी ही करनी है, पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, इफ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर, यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
1: जी, अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुँच गए, तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देयर इज़ वन लाइफ, एक जिंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना। ऐसा कोई चीज़ छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया। सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया, मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया। सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है, और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में। सो पूरे कश्मीर घाटी अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला। लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स। देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए, बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in my career as a helicopter
1: kya khub hamari hum jo bhi kaam karte hain usme ek satisfying point zarur hota hai aur aapke liye satisfying point tha jahan par jeevan daan yani ki jeevan bachaya aur apne jeevan ko jab hum uske bare mein nahi sochte hain aur aisa sirf ek armed force personally soch sakta hai ki jeevan ko to hatheli pe lekar chalte hain और इस उद्देश्य से चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है।
0: और इसका यू नो आई आल्सो वांट टू फोकस ऑन कैमराडरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क। तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअल्टीज हो गई, 2 आदमी हमारे उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था, बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता क्योंकि रोड दूर था। तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे। And because of that association, because of that camaraderie, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो ज़िद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा। और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया। सो यू नो दिस इज़ पार्ट ऑफ द इथॉस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी दैट फॉर ईच अदर देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ असिस्टेंस दैट वी गिव टू ईच अदर।
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना यहाँ पे भी। एक तरह का एक्सचेंज है, आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था। दिस ऑल बट रिवॉल्व्स अराउंड यू।
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स, कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई, ठीक है। अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इथॉस।
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। 23 साल बाद रिटायरमेंट, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ कुछ छोड़ आया हूँ?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था,
1: और रिटायरमेंट से
0: डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था। एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट, फ्रॉम दैट उस ग्रुप से आप निकलना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 months ऑफ स्लीपलेस नाइट्स टू डिसाइड कि छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ। बट फाइनली जब मैंने छोड़ा, उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। यू नो आई वेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में। सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज़ होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद, कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे हूँ, वो रियलाइज़ हो नहीं पाया। एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। आज भी आई फॉलो द सेम टाइमलाइन। सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट।
1: जिस तरह से इंटरमिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर, फिर अपनी सर्विसेज देना, और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, निश्चित रूप से। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, व्हाट आर प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो?
0: ओके, सो प्री मैच्योर रिटायरमेंट बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज़ रिटायरमेंट, अप्लाइंग फॉर रिटायरमेंट और टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर योर मैंडेटरी सर्विस पीरियड और योर मैंडेटरी बॉन्ड पीरियड हैज एक्सपायर्ड। परमानेंट कमीशनड ऑफिसर्स के लिए 20 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार सोल्जर्स के लिए अलग अलग रैंक पे टाइम निर्धारित है। सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स, बड़े सारे, इट्स अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ वेरियस कंपल्शंस और पर्सनल रीजन्स, a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization agrees on the justification ki ha aapki baat mein merit hai, they will let you go before your mandatory time. So that is what premature retirement is.
1: Ji, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं, एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के ज़रिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं। यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र सारी मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है। तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिल तारीफ है। संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबल

0: पुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है। पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जी से बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत। संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है। और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त। जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन्ड ऑफिसर तैनात हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई सर, ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं?
1: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज़ उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते। अगर आपके घर के घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है, सो दैट इज़ अ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली। And I have absolute respect for the ladies, for the wives of all our soldiers who let them go, who gladly let them go to their field postings, for their deployments, for their trainings, bina ro dho ke, bina ruckus create kare hue,
0: bina
1: complaints kare hue, aur unki absence mein akele ghar sambhalna, bachchon ko padhana, bachchon ko dekhbhal karna, parents ko dekhbhal karna, सोशल इंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज़ अ क्रेडिट टू द लेडीज, टू ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए।
0: वाह क्या बात है, तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं रिटायर भी हो चुके होंगे तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है, और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सो मैं यही कहना चाहूँगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही ज़िंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं पाना चाहते हैं उसे पा लीजिए। हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, यू नो प्लीज़ बी प्राउड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, बिकॉज दे डू सैक्रिफाइस अ लॉट on your behalf, and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
0: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश। और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स्ड पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी हैं, स्पाउस हैं, तो हमारी ओर से आपको आपके लिए ये गाना और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल दिलीप चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि वो ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता है। तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 20 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ब्लॉक और तहसील स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। और मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 सालों बाद फिर से आयोजित हो रही है। यह टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शनिवार से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: क्योंकि आज हमें कहीं जाना है।
1: अच्छा, कहाँ?
0: अभी बता दिया तो फिर बात ही क्या रह जाएगी अनमोल।
1: ओहो, तो आज सस्पेंस भी है।
0: थोड़ा सा तो बनता भी है।
1: अच्छा चलो, इतना बता दो कि जाना कैसे है।
0: अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो मैं एक छोटा सा क्लू देती हूँ। कभी सड़क से, कभी ट्रेन से, और कभी बस यादों के सहारे।
1: ओह अच्छा, तो आज कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: क्योंकि कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए टिकट नहीं चाहिए,
0: सिर्फ मन चाहिए।
1: और थोड़ी सी यादें।
0: तो चलिए आज इन्हीं के सहारे थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: वैसे सफर पर निकलते समय हम कितनी सारी तैयारी करते हैं ना।
0: बहुत ज्यादा।
1: कहाँ जाना है,
0: किसके साथ जाना है,
1: और कितने बजे निकलना है,
0: क्या क्या सामान ले जाना है,
1: और फिर निकलने से पहले 10 बार चेक करना पड़ता है कि कुछ छूटा तो नहीं।
0: उफ, ये सब कितना ज्यादा बोझिल महसूस होता है। लेकिन कभी कभी सबसे अच्छे सफर वही होते हैं जिनकी ज्यादा प्लानिंग नहीं होती।
1: बस मन किया और निकल पड़े,
0: ना ज्यादा सोचा, ना ज्यादा हिसाब लगाया, ना कोई कैलकुलेशंस किए।
1: तो अभी थोड़ी देर के लिए प्लानिंग को साइड में रखते हैं
0: और बस उस एहसास के साथ चलते हैं
1: जहां शाम मलंग सी, रातें सुरंग सी होती हैं।

0: संजली कुछ देर के लिए लगा जैसे हम सचमुच कहीं घूम कर आ गए हों।
1: हाँ, यही तो अच्छी बात है एक प्यारी से गीत की।
0: जगह वही रहती है
1: लेकिन मूड सारे बदल जाते हैं।
0: वैसे संजली, तुम्हारे किसी सफर की ऐसी मेमोरी है जो आज भी तुम्हें याद हो?
1: बताना तो मुश्किल है, बताना पड़ेगा क्या?
0: हाँ, एक बता दो।
1: क्यों?
0: क्योंकि सफर में बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, जैसे सुबह की चाय,
0: हाँ,
1: ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना,
0: और वो लोग जिनसे हम सफर में पहली बार मिले।
1: बिल्कुल सही बोला। कई बार तो ऐसा लगता है कि सामने बैठे किसी अनजान से बात ही शुरू हो जाए।
0: और फिर पता ही नहीं चलता कि 1, 2, 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं। और पहला सवाल होता है, कहाँ जा रहे हो?
1: फिर कहाँ से आए हो?
0: फिर पढ़ाई, नौकरी, घर,
1: और कभी कभी तो खाना भी शेयर हो जाता है।
0: यही तो हमारे यहाँ के सफर की सबसे अच्छी खासियत है।
1: आपने एक बात गौर की, टिकट आपकी जरूर होती है।
0: लेकिन कहानी सबकी बन जाती है।
1: लेकिन अनमोल, आप मुझे एक बात बताओ,
0: पूछो।
1: जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो कितनी ज्यादा तैयारियां करते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, कपड़े,
1: चार्जर,
0: पावर बैंक,
1: टिकट्स,
0: और अगर भुक्खड़ दोस्त साथ हो तो
1: स्नैक तो बनता ही है, सबसे जरूरी है।
0: ये तो है भाई।
1: लेकिन जिंदगी के सफर में
0: कोई पैकिंग नहीं,
1: कोई प्रॉपर मैप नहीं,
0: और आगे क्या होने वाला है ये भी नहीं पता होता।
1: अनमोल, जरा आप सोचो, अगर जिंदगी में कोई मैप होता तो क्या बात होती?
0: बड़ा मजेदार होता यार।
1: कैसे?
0: आगे करियर का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
1: तो कृपया धैर्य बनाए रखें।
0: आपके रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं,
1: और कभी कभी तो
0: रीकैलकुलेशन। बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: लेकिन शायद यही तो जिंदगी है, और यही सारी चीजें इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं।
0: अगर हमें पहले से सब पता होता
1: तो शायद एक्साइटमेंट ही नहीं होता। और कभी कभी हम किसी जगह इसलिए नहीं जाते कि वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत या खास है,
0: बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जाकर हम खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, रोज की भागदौड़ से थोड़ी सी देर खुद के लिए और बाहर,
0: अपने आप के थोड़ा सा करीब, तभी पता चलता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं जमाने में वो मुझी में था।
1: बिल्कुल,

0: संजली कुछ धुनें खत्म हो जाती हैं।
1: वाकई में अनमोल, कुछ धुनें तो खत्म हो जाती हैं लेकिन उनका असर जिंदगी भर रहता है।
0: और कभी कभी कोई धुन सुनते ही कोई जगह याद आ जाती है,
1: या कोई इंसान,
0: या फिर अपना ही कोई पुराना वर्जन।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली,
0: क्योंकि हम एक ही जिंदगी जीते हैं
1: लेकिन हर उम्र में उसका मतलब बदलता रहता है। आपने ये गौर किया है क्या?
0: अरे हाँ बिल्कुल, बचपन में लगता था जल्दी से बड़े हो जाएं,
1: और लगता था पता नहीं कब ये स्कूल खत्म होगा,
0: और फिर कॉलेज खत्म करना,
1: फिर जॉब,
0: और फिर उसके बाद,
1: उसके बाद क्या? उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
0: आज के युवाओं की बात करें तो एक चीज बहुत कॉमन है,
1: क्या अनमोल?
0: जल्दी।
1: हाँ, मैं इस बात से तो अग्री करूंगी।
0: हाँ, जैसे कि जल्दी जॉब चाहिए,
1: जल्दी सक्सेस चाहिए,
0: पैसे भी जल्दी चाहिए,
1: और जल्दी सेटल भी होना है, वो भी अब्रॉड।
0: और अगर थोड़ा समय लग जाए
1: तो क्या बात है, लगता है कि शायद हम बहुत पीछे रह गए।
0: और फिर साइकिल शुरू होता है कंपैरिजन का।
1: बिल्कुल अनमोल, सोशल मीडिया खुलते ही हमें पता चलता है कि
0: किसी की नई जॉब लग गई,
1: तो किसी का प्रमोशन हो गया,
0: किसी की फॉरेन ट्रिप हो गई,
1: तो किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप से अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया,
0: और हम सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ हूँ।
1: उफ, लेकिन एक बात हम जरूर भूल जाते हैं, पूछो क्या?
0: क्या?
1: हमें दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी ही नहीं दिखाई दे रही है।
0: हाँ, सिर्फ अच्छे मोमेंट्स दिखाई देते हैं,
1: संघर्ष बिल्कुल भी नहीं।
0: बिल्कुल, सक्सेस दिखाई देती है,
1: फेलियर्स का नामो निशान नहीं,
0: और सीधे रिजल्ट दिखाई देता है,
1: प्रोसेस दिखती ही नहीं।
0: तो अगर कोई हमसे पहले किसी जगह पहुंच गया
1: तो दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लेट हैं।
0: हो सकता है कि उसका रास्ता अलग हो।
1: हाँ, और हमारा डिफरेंट,
0: और शायद लंबा,
1: शायद थोड़ा और लंबा, लेकिन अपना। वैसे तुम्हें क्या लगता है सबसे मुश्किल सफर कौन सा होता है अनमोल?
0: जहाँ रास्ता पता ना हो वही सबसे मुश्किल है।
1: नहीं,
0: फिर
1: अपने सपनों तक पहुंचने वाला रास्ता सबसे कठिन होता है।
0: अच्छा, ये क्यों?
1: क्योंकि यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं होता,
0: बस एक सपना होता है,
1: एक आइडिया जरूर होता है,
0: और फिर रोज थोड़े थोड़ा काम करना पड़ता है,
1: कभी 100% कॉन्फिडेंस के साथ,
0: तो कभी 0% बिल्कुल नहीं रहता,
1: कभी लगता है सब हो जाएगा,
0: और कभी लगता है कुछ भी नहीं होगा।
1: लेकिन अगले दिन फिर कोशिश करते हैं हम,
0: और शायद यही असली बात होती है,
1: कभी रुकना नहीं है, कभी थमना नहीं है।

0: कुछ देर के लिए बस मन करता है ना अनमोल, चलते जाए और थोड़ा और आगे चलें।
1: हाँ करता तो है।
0: और शायद जिंदगी में भी हर चीज का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है।
1: हाँ हर रास्ते का एंड पहले पता होना भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल, बस इतना पता हो कि आगे बढ़ना है।
1: और अगर रास्ता बदल जाए तो
0: तो
1: नया रास्ता देखेंगे।
0: सिंपल दोस्तों,
1: सुनने में सिंपल है,
0: करने में
1: थोड़ा मुश्किल।
0: लेकिन पॉसिबल तो है।
1: सिंजली एक सीरियस सवाल,
0: ओफो, पूछिए।
1: मंजिल ज्यादा जरूरी है या रास्ता?
0: पहले तुम बताओ।
1: भाई मुझे तो लगता है कि मंजिल,
0: और ऐसा आपको क्यों लगता है?
1: क्योंकि जाना तो कहीं है ना।
0: सही,
1: लेकिन तुम शायद रास्ता बोलोगी।
0: तुम मुझे इतने अच्छे से कब से जानने लगे अनमोल?
1: क्यों?
0: क्योंकि मैं रास्ता ही चुनती, क्योंकि अगर पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर रहेगा तो रास्ते में क्या हो रहा है वो हमें पता ही नहीं चलेगा।
1: मतलब
0: मान लो पहाड़ घूमने गए हो आप,
1: गए हैं पहाड़ घूमने?
0: वहां पहुंचे, ढेर सारी सेल्फीज और फोटोज ली, वापस आ गए,
1: हाँ ली। अच्छा हाँ ट्रिप हो गई।
0: लेकिन रास्ते में जो देखा, जो महसूस किया, उसका क्या?
1: हाँ वही तो असली मेमोरी है।
0: एग्जैक्टली।
1: जिंदगी में भी हम यही करते हैं,
0: अब तुम पते पर पहुंचे,
1: कहते हैं बस ये मिल जाए फिर खुश रहेंगे,
0: फिर तो मिल जाता है ना,
1: और फिर अगली चीज चाहिए।
0: यानी मंजिल मिलते ही दूसरी मंजिल की तैयारी शुरू हो जाती है।
1: फिर रास्ते में खुश रहना भी सीखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों में,
1: दोस्तों के साथ चाय में,
0: घर वालों के साथ उठना बैठना,
1: बारिश में बाहर निकलना।
0: किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन।

0: ना जाना।
1: ये छोटी चीजें ही बाद में बड़ी मेमोरी बन जाती है।
0: देखो तुम कितने होशियार हो, क्योंकि तुम समझ गए कि आखिर में यही याद रह जाती है।
1: जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी वक्त आते हैं
0: जब लगता है कि अब सब कुछ बदलना चाहिए,
1: वही पुराना रूटीन छोड़कर कुछ नया करना चाहिए,
0: कुछ नया सीखना चाहिए, जैसे पॉटरी, स्केचिंग, कुकिंग, बेकिंग, गार्डनिंग।
1: पर शायद थोड़ा रिस्क भी तो लेना चाहिए।
0: रिस्क के साथ साथ जरूरी है कि
1: खुद को एक और मौका देना चाहिए,
0: क्योंकि कभी कभी हमें किसी और की नहीं
1: बस खुद की हाँ की चाह होती है।
0: तो कुछ देर के लिए शब्दों को यहीं रखते दोस्तों,
1: और आगे की आवाज को खुद बोलने देते हैं।

0: तो सेंजली,
1: हाँ अनमोल,
0: आज काफी घूम लिया
1: और मजे की बात तो ये है कि हमें स्टूडियो से बाहर भी नहीं जाना पड़ा
0: और हम ट्रेन में घूम आए,
1: सड़कों पर भी,
0: कुछ पुरानी यादों में भी
1: और थोड़ा सा अपने अंदर भी।
0: अगर आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में कहना हो तो
1: हर किसी का रास्ता अलग होता है
0: और स्पीड भी।
1: इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका रास्ता थोड़ा ज्यादा लंबा है
0: तो परेशान मत होइए।
1: अगर थोड़ी देर रुकना भी पड़े
0: तो खुद को गलत मत समझिए।
1: और अगर रास्ता बदल गया है
0: तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया,
1: क्योंकि दोस्तों हो सकता है वही नया रास्ता आपको किसी बेहतर जगह ले जाए, बेहतर दिशा प्रदान करे।
0: बस चलते रहिए
1: और कभी जरूरत लगे तो रुककर थोड़ा सांस ले लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए,
0: क्योंकि जिंदगी सिर्फ वहाँ पहुँचने का नाम नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: रास्ते में जो मिलता है,
0: जो सीखते हैं,
1: जिन लोगों से मिलते हैं,
0: वो सब भी जिंदगी का हिस्सा ही तो होते हैं
1: और शायद यही सफर को खास बनाता है।
0: इसी के साथ आज के लिए दीजिए हमें इजाजत,
1: मिलेंगे फिर एक नई बातचीत और नई कहानी के साथ।
0: तब तक खुश रहिए,
1: अपना ख्याल रखिए
0: और जहाँ हैं, जिस रास्ते पर हैं,
1: उसका थोड़ा और भी मजा लीजिए,
0: क्योंकि मंजिल अपनी जगह है
1: लेकिन रास्ते भी कम खूबसूरत नहीं है।
0: तो साथियों, अनुमति दीजिए आपके आज के रेडियो साथी अनमोल द्विवेदी
1: और सेंजली नायक को। नमस्कार, नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: फंसी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं धरती की।

अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे सूरज फिल्म का गाना। कार्यक्रम का अगला गीत आराधना फिल्म से लिया है। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत एसडी बर्मन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत नगीना फिल्म से हमने लिया है, जिसे आवाज़ दी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गए गाइड फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: अरे वाह श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत गजल कहानियां और ढेर सारी यादें, हर जनरेशन की धड़कन, हर दिल की पहचान, आकाशवाणी आज भी उतना ही ताजा जितना पहले दिन था। आकाशवाणी 90 साल।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन 2.0 के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे। मित्रों को पैसे भेजने, दुकानों पर भुगतान करने या QR कोड स्कैन कर लेनदेन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपये तक की कमाई करने वाले विक्रेताओं पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ब्लॉक और तहसील स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम कुछ देर बाद 7:30 बजे नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। भारत इस श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं। लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में

लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है, तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।

सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता

0: सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविन्द्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

पहला गीत मौसम फिल्म से लिया है, आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र की हैं, गुलजार के बोल संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम का अगला गीत थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से लिया है, जिसे गाया आशा भोसले ने। गुलजार के बोल संगीत है खयाम का।

मोहम्मद रफ़ी के गाए काला बाजार फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सही

0: जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम 7:25 पर बुंदेली समाचार होंगे। 7:30 सुनिएगा किसान वाणी, जिसमें आज आप सुन सकते हैं पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिकारियों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत, सेवा संकल्प अभियान, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:30। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10:00। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 10:25 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। अब आइए आपको जानकारी दे दें कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। पहले बता दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुबह 8:30 सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। फिल्म संगीत सुबह 9:05 और 9:30 पर। गांधी चर्चा का समय होगा सुबह 9:15। 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर महिला सरंसार कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 कल हम आपको सुनवाएंगे किरण कुमार बमनेरे का वायलिन वादन। आकाशवाणी भोपाल से कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें कल सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आप आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसे सुनिएगा सुबह 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक जमुनिया का भाग 31। महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00 आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी छतरपुर की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत दोपहर 2:00, 2:30 पर आपकी फरमाइश। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:30। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम रोज ही की तरह आप सुन सकते हैं शाम 6:00। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम कर्टेन रेजर, इसे कल रात 8:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। खेल जगत कार्यक्रम में रात्रि 9:30 कल आप सुन सकते हैं डॉली सक्सेना की वार्ता एशियाई खेल 2026। 9:45 और रात 10:00 फिल्म संगीत। रात 10:25 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का भाग 2 हम आपको सुनवाएंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से निशुल्क रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्पष्ट किया, आम लोगों के लिए व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई लेनदेन रहेगा पूरी तरह निशुल्क। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आज दिल्ली में खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज इंदौर में ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रयास अब धरातल पर साकार हो रहा है।
3: अपने पूरे प्रदेश के 55 जिले, 10 संभाग और 23,000 से ज्यादा गांवों के अंदर कोई अपना प्रधानमंत्री आवास बना के बैठा है या निजी मकान बना के बैठा है, अपने सारे मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए ये 1 महीना 17 सितंबर से लगाकर 17 अक्टूबर तक घर घर जाके पटवारी के माध्यम से आपकी रजिस्ट्री कराने का अभियान चालू हो रहा है।
1: स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 के तहत भूस्वामियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में आज शाम दीपोत्सव के दौरान 30 लाख से अधिक दीये जलाए जा रहे हैं। नर्मदापुरम में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जबकि मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ लोक में 51,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए जा

0: जाएंगे। ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, खंडवा, मुरैना, श्योपुर और रायसेन में इस दौरान रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पौधारोपण कर त्रिवेणी हरित सेतु का लोकार्पण किया। नीमच, झाबुआ, आगरमालवा और अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए चारों श्रम संहिताओं को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पुराने 29 श्रम कानूनों को पारदर्शी और सरल बनाते हुए चार प्रमुख संहिताओं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता में समेकित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव से देश के करोड़ों श्रमिकों, विशेषकर असंगठित गिग वर्कर और महिला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नए नियमों के तहत अब सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं महिला कर्मचारियों को समान वेतन, सुरक्षा और रात्रिकालीन पाली में काम करने के समान अवसर मिलेंगे। उद्योग जगत के लिए व्यापार को आसान बनाने के लिए एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक रिटर्न की व्यवस्था भी लागू की गई है। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के कार्यबल को सुरक्षित, सशक्त और भविष्य के लिए तैयार बनाने को लेकर एक बड़ी पहल माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बमोरी में 7 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डिग्री कॉलेज भवन और 3.8 करोड़ रुपए की लागत से मुद्रा हनुमान विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने सिरसी में नवनिर्मित पुलिया का भी लोकार्पण किया और फिर सहरिया चौपाल में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंधिया जिला अस्पताल गुना में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए और उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। शहडोल जिले में शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI में विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया। वहीं जबलपुर में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती गुरुवार को जबलपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। विश्वकर्मा समाज की तरफ से प्रदेश भर के अलग अलग शहर में पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डिजिटल लेनदेन को सरकार ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सभी UPI लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। दोस्तों को पैसे भेजने, दुकानों पर भुगतान करने या QR कोड स्कैन करके लेनदेन करने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े UPI लेनदेन भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले छोटे विक्रेताओं पर भी कोई शुल्क लागू नहीं होगा, जिससे लगभग 96% व्यापारी लेनदेन पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी आज से 17 अक्टूबर तक सेवा सेतु कैंप लगाएगी। ये शिविर ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बात खेलों की करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। बता दें कि भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ताज़ा जानकारी मिलने तक अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल के मुख्य प्रशिक्षक शिव कुमार प्रसाद को ISF जिमनेसियाड 2026 के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम की चयन समिति का सदस्य नामित किया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 3 से 8 दिसंबर तक होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अंडर 18 बालक और बालिका वर्ग के चयन ट्रायल और चाइन ट्रायल

6 और 7 अक्टूबर को गोवा में होंगे। श्री प्रसाद चयन समिति के सदस्य के रूप में भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैयाओं, आज हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और विशेष रूप से आपहरों के लाने जो है हम एक बातचीत जो है स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित है वो आज सुने हैं और इसके संगे संगे मनोरंजन भी करे हैं। मनो इसे पहल भैया रहो थोड़ी सी जानकारी अपन जो है ऐसी लेते हैं ताकि जो है हमारे जो युवा हैं वो उनसे लाभान्वित हो सके। भैया रहो देखो आजकल हर हाथ में मोबाइल है, हर युवा को मोबाइल की जरूरत है, हर व्यक्ति को मोबाइल की जरूरत है और मोबाइल को सबसे ज्यादा काय की जरूरत होती है आपको पता है? बैटरी की। अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो फिर मोबाइल कोनो काम को नहीं रहते हैं। सबसे ज्यादा मांग, सबसे ज्यादा खपत और सबसे ज्यादा उत्पादन बैटरी को हो रहा है। जितने मोबाइल नहीं बिक रहे हैं उनसे ज्यादा मोबाइल की बैटरी की जरूरत पड़ रही है और जब जो चीज की ज्यादा जरूरत हुई है तो फिर उनको उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़े। मोबाइल बैटरी एनर्जी यूनिट इके लाने जो है कई तरह के जो है इक्विपमेंट यानी कि औजार है वे भी जो है बाजार में मुहैया करवाए जा रहे हैं और जब ऊर्जा की मांग लगातार बढ़त है तो ऐसे में ऊर्जा को उचित भंडारण और ऊर्जा को बेहतर उपयोग के लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और फिर उपयोग भी देख ले, देखो कई बार क्या होते है कि सौर ऊर्जा के साथ भी जो यूनिट का उपयोग होते हैं मोबाइल चार्जिंग में होती है, इसके संगे संगे आपातकालीन उपयोग भी होते हैं और फिर बिजली की जहां आपूर्ति नहीं होती वहां भी बैटरी की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा को जहां प्रबंधन करते हैं वहां भी जो है MBU यूनिट जो है इसकी जरूरत होती है। तो जरूरत के हिसाब से जो है इको आप अगर उत्पादन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होते मांग होते और युवाओं के लाने एक तरह से जो बड़ो अच्छो जो है व्यवसाय साबित हो सकता है। तो कोशिश करें MBU के बारे में और जानकारी लें यानी कि मोबाइल बैटरी यूनिट के बारे में और जो तकनीकें हैं वो सीखें इसके बाद में जो है बाजार में उतरें। और भैया पेल अपन सुना थे जो लोक भजन गायक हैं बुंदेल सिंह लोधी और बिनके साथी।

भैया एक बहुत ही बढ़िया योजना चल रही है, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नत योजना, और जब योजना को शॉर्ट फॉर्म में पीएमएफएमई भी कहते हैं। भैया आपको जानकारी हुई है कि हम जो खेती के उत्पाद हैं उन्हें सीधे उत्पादन करके और हम जो है बाजार में बेचे थे तो उनको उतना लाभ नहीं मिला थे, और अगर उन्हें प्रसंस्करण करके यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के तौर पर उन्हें तैयार करके बेचे थे तो दुगनो तिगनो बल्कि जो है चौगुनो लाभ मिला थे। ई योजना के माध्यम से छोटे छोटे उद्यमियों, किसानों, स्वयं सहायता समूह और दूसरे लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण से अपन जोड़ सकते हैं और एक नयो व्यवसाय विकसित हो सकते हैं। ई योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने, आधुनिक मशीनरी लगाने, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन जैसी गतिविधियों के लाने सरकारी सहायता को प्रावधान है। और कई बार तो जो है अगर आपने लोन लेके को यूनिट लगाओ है तो उनमें सीधो सब्सिडी को प्रावधान रहते हैं। और फिर जो मसाले उद्योग है इनमें तो जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को महत्वपूर्ण योगदान है। कई किसान भाइयों ने ई योजना में लाभ लो है, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अपने

नज़दीकी जो जिला व्यापार केंद्र है या फिर अपने जो उद्यानिकी विशेषज्ञ उनसे भी आप सीधे बातचीत कर सकते हो। और भैया रहो किसान वाणी कार्यक्रम में अब अपन सुना थे जो स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित कार्यक्रम मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिकारी विशेषज्ञों से भई बातचीत पर आधारित है। जो कार्यक्रम को संयोजन करो है चंद्रशेखर शर्मा ने और रिकॉर्डिंग सहयोग दाओ है अंशु तिलेठे ने। तो अपन सुना थे।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आए हैं कुक्कुट विकास निगम। हमने आज यहाँ पर बातचीत करी डॉक्टर एस एन शुक्ला, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे आपके विभाग द्वारा हमारे दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं।
1: पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में कुछ योजनाएं हैं जो डायरेक्ट पशुपालकों के हित की होती हैं। इनमें से दुधारू पशु से संबंधित दो योजनाएं मुख्य रूप से हैं। एक है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम और दूसरा है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। जो पहली योजना है जिसमें कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें दो मुर्रा भैंसें, दुधारू भैंसें पशुपालकों को दी जाती हैं। इनमें से जो सामान्य व पिछड़ा वर्ग के जो हितग्राही हैं उनको 50% अनुदान पर और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राही हैं उनको 75% अनुदान पर ये योजनाएं फायदा दिया जाता है। इसमें जो यूनिट कॉस्ट है वो 2,95,000 है और हितग्राही जब का अपना अंशदान दे देते हैं तो यहाँ से किसी एक जो पशु प्रदायकर्ता होते हैं जिनको हम वेंडर बोलते हैं उनके माध्यम से पशु और उनको प्रदाय किए जाते हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो पशुपालक हैं ये हरियाणा राज्य जाते हैं और साथ में उनके एक वेटनरी डॉक्टर जाता है। वो डॉक्टर उन जानवरों की जो हेल्थ चेकअप करता है और पशुपालक जब उन जानवरों का दूध वगैरह देख के और हेल्थ देख के संतुष्ट हो जाते हैं तब वो उन जानवरों को सिलेक्ट करते हैं और वो जानवर इनके गृह जिले पे आता है। और इसमें जो भाड़ा है, आने जाने का खर्चा है और बीमा वगैरह पूरा खर्च सरकार वहन करती है। अगर ये 10-12 लीटर के जानवर हमारे प्रदेश में आएंगे तो हितग्राहियों का तो भला होगा ही, इस तरह से जो हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन है ये भी बढ़ेगा और उन हितग्राहियों से दूध खरीदने के लिए भी एक नेशनल डेयरी कोऑपरेटिव के माध्यम से उनको दूध का संकलन किया जाता है तो उनको बहुत दूर दूध लेने की जरूरत नहीं है, ले जाने की जरूरत नहीं है और उनका दूध उनके दरवाजे पर ही कलेक्ट किया जा सकता है। एक दूसरी योजना है जी। एक मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना है, ये 2022-23 में प्रारंभ की गई थी प्रदेश में। ये 14 जिलों में स्टार्ट की गई थी। इसमें से 3 विशेष पिछड़ी जनजाति जो है बैगा, भारिया, सहारिया, इनके लिए ये योजना थी जी। ये योजना में 90% शासन का अनुदान रहता है और लगभग इसमें गाय भैंस दोनों है, इसमें लगभग 80-90 हजार रूपए गाय का, 2 गायों का रहता है और 1,10,000 के आसपास इसमें भैंस का रहता है जी। 2 भैंसें मिलती हैं तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी ये योजना शुरू की गई है ताकि वो लोग भी दूध के प्रति आकर्षित हों, दूध का खान पान खुद का और अपने बच्चों का करें और साथ में दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान दें। तो ये योजना भी अच्छी है और इसको आगे फ्यूचर में हो सकता है कुछ और जगह में इसको बढ़ाया जाए। और अभी तक दुधारू पशु प्रदाय योजना में करीब 2408 पशु प्रदाय किए जा चुके हैं और करीब डेयरी प्लस योजना में 6,000 से ज्यादा जानवर पैदा किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना है, इसमें हम ऐसे हितग्राही चयन करते हैं जो वास्तव में बैगा, भारिया, सहारिया के ही हों और दूसरी बात यह है कि उनको कम से कम पशुपालन से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कम से कम पशुपालन का थोड़ा ज्ञान हो उनको, दूध कैसे निकालते हैं, खाना कब खिलाते हैं जानवर को और थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। डेयरी प्लस योजना है, हर जिले में है। दुधारू पशु प्रदाय योजना केवल 14 जिलों में है लेकिन विशेष जनजातियों के लिए है तो उन जिलों को यहाँ से पत्र भेजा जाता

आता है और हर जिले में उपसंचालक का ऑफिस होता है और वहाँ सभी को पता रहता है और वहाँ के हितग्राहियों का चयन उस जिले के जो संचालक है उसके माध्यम से किया जाता है। तो जो हितग्राही अगर ऑफिस में पहुँचते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होता है तो ऐसा होता है, अगर नहीं पहुँचते हैं तो ब्लॉक के जो डॉक्टर्स होते हैं अधिकारी होते हैं वो अपने ब्लॉक से उनको चयन करते हैं और चयन करके डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाते हैं और वहाँ से भी सूची बन के भोपाल आती है और जब उनका सूची और हितग्राही अंशदान आ जाता है तो उसके बाद हम उनकी लिस्ट बना के सप्लायर को देते हैं और उसकी जानकारी उपसंचालक को देते हैं तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, इस हिसाब से आगे उसका काम करते हैं।

0: अब हमारे साथ डॉक्टर गौरव थोरात, आप कार्यपालिक अधिकारी हैं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पशुपालन और डेयरी उत्पादन के लिए योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, उस योजना के अंतर्गत क्या क्या हमारे पशुपालकों को दिया जाता है, सामग्री क्या क्या दी जाती है?
1: नमस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी है पशुपालन विभाग की। उसके अंतर्गत हम लोग जो भी शासन द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं हितग्राही मूलक, जिसमें कि हमें हितग्राहियों को खास करके पशु प्रदाय करते हैं, उसका काम मैं देखता हूँ यहाँ पे। और इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में मेरे पास चार योजनाएं हैं शासन की। पहली है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, तीसरी है संबंधित मुर्रापाड़ा योजना, और चौथी है नंदीशाला योजना। ये सभी योजनाएं हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, इनके अंतर्गत पशुओं का प्रदाय किया जाता है हितग्राहियों को। इसमें अनुदान और अंशदान राशि का प्रावधान है। अनुदान राशि शासन द्वारा निर्धारित है और दी जाती है। अंशदान राशि किसान द्वारा या पशुपालक द्वारा समय समय पर मांग अनुसार जमा की जाती है।
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे इन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे किसान भाई या हितग्राही कैसे करें या सरकार द्वारा कैसे किया जाता है?
1: हमारी सभी योजनाएं के फॉर्म और उनकी जानकारी हमारे ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सालय और हमारे जिला स्तर के उपसंचालक कार्यालयों पर उपलब्ध रहती है। जो उनका फॉर्म रहता है, फॉर्म जिला स्तर और ब्लॉक स्तर से ही भरा जाता है और वहीं पे सब्सिडी जमा होती है। और वहाँ से जो नाम होते हैं जो हितग्राहियों के पशुपालकों के लाभान्वित जिनको किया जाना है, उनके नाम हम लोगों के पास आते हैं और उसके बाद हम वेंडर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पशु उनको प्रदाय करते हैं, घर पहुँचा कर देने का प्रावधान। अनुदान राशि सभी योजनाओं में अलग अलग है, इसलिए मैं योजना वाले इनको बता सकता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है, यह पूरे प्रदेश में संचालित है। इस योजना अंतर्गत दो दुधारू मुर्रा भैंसे हितग्राहियों को 50% सामान्य और मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को और 75% ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रदाय की जाती है। इस योजना अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो हितग्राही होता है वह स्वयं एक जिला या ब्लॉक स्तर के पशु चिकित्सक के साथ हरियाणा राज्य जाता है। वहाँ पे जो हमारे निर्धारित वेंडर्स हैं उनके पास हम वहाँ उनके रहने रुकने की व्यवस्था रहती है और वो लोग उनको वहाँ पे पूरे क्षेत्र में अच्छे अच्छे फार्मों पे और उनके आसपास भी जो एनिमल है उनको सामने देख के चयन करवाते हैं। उसके चयन करने पश्चात पशु चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाता है, उनका दुग्ध मापन किया जाता है चार समय, फिर हितग्राही अपनी स्वेच्छा से उनको मतलब बोल देता है हाँ हमें ये पसंद है, तो फिर वो उसके घर पे पहुंचा के दी जाती है। तो उसका फिर 3 वर्ष के लिए बीमा कराया जाता है। जब वो घर पे उतरती हैं उसका 3 साल के लिए बीमा भी कराया जाता है और उनका हितग्राहियों का आने जाने का रुकने ठहरने का पूरा व्यय शासन द्वारा ही वहन किया जाता है। मतलब जो अंशदान दे रहे हैं वो लोग उसी में सबको समाये थे, उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं। और उसमें एक प्रावधान और भी है, अगर कोई हितग्राही चाहता है कि भाई मुझे और अच्छी भैंस लेनी है ऊपर की भैंस, मतलब कई लोग होता है भाई जैसे हमारे पास 10 से 12 लीटर और 16-18 लीटर वाली और टॉप क्वालिटी, तो उसके लिए वो अपनी उसकी डिफरेंस की राशि बनती है, अंतर की राशि का प्रावधान भी है कैबिनेट के द्वारा ही है, तो वो देखे वो और अच्छी भी उस मतलब अपने हिसाब से ले सकता है।
0: अंतर की राशि से क्या समझें?
1: अंतर की राशि से आप ये समझ सकते हैं जैसे भैंसों का कोई मतलब MRP तो होता नहीं है, उनकी दुग्ध क्षमता, उनकी क्वालिटी, ब्रीड क्वालिटी पे डिपेंड करता है
0: जी, बिल्कुल।
1: और अभी जिस हिसाब से है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख अलग अलग रेट की होती है भैंसें, और जो जैसे मान लो कोई 16 लीटर वाली है और बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो वो किसान की खुद की रेट है, वहाँ पे कोई उस पर MRP नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है,
0: ठीक।
1: तो वो उसमें बार्गेनिंग हमारे जो वेंडर रहता है वो करवाता है मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा अंतर की राशि नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस कई बार देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उच्च क्वालिटी के ले रहे हैं तो अपने निर्धारित मापदंड की लेंगे तो उन्हें कोई भी राशि नहीं देना पड़ती।
0: अच्छा,
1: वो केवल अंतर की राशि उच्च क्वालिटी के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे सोचते हैं कि हम इतने दूर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो हम अच्छी भैंस लेके आए, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन नहीं किया है, मतलब उनको स्वतंत्र किया हुआ है। और एक चीज और भी बता दूं मैं, कोई लोग आदमी नहीं चाहता लेना, वहाँ जाने के बाद भी कई बार वो लोग मना कर देते हमें भैंस पसंद नहीं आई या हमें नहीं लेना है किसी भी कारण से, वो कई बार लोग नहीं जा पाते घर में कुछ उनका, तो हम उनकी पूरी राशि वापस भी लौटा देते हैं।
0: बहुत अच्छा,
1: मतलब वो बाध्यता नहीं है, मतलब इसमें किसी चीज की।
0: बहुत अच्छा।
1: और दूसरी हमारी योजना है दुधारू पशु प्रदाय, वो बेसिकली जो हमारे प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं बैगा भैरिया सहरिया, उन हितग्राहियों के लिए है, ये दूध उत्पादन के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है कि, और दूसरा उनको पशुपालन से जोड़ने के लिए है। वो पशुपालन से जुड़े हुए हैं बकरी और मुर्गी के माध्यम से, लेकिन वो गाय भैंस के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो उनको इस धारा में लाने के लिए है। वो बेसिकली वो दूध के साथ साथ ये भी है, मतलब स्वावलंबी बने, वो दूध के माध्यम इस व्यवसाय से भी जुड़े हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: तो जी केवल बेगा एरिया के लिए 14 जिलों में, इसमें हितराई के पास हम गाय, इसमें गाय और भैंस दोनों हैं
0: जी।
1: तो भाभी जाइए एडमिल पहुंच जाते हैं फिर अपनी चॉइस से, उनके सामने चार मिल्किंग होती है, कमेटी बनी हुई थी जिला की, उसमें माननीय विधायक गण सांसद महोदय जनप्रतिनिधि को बुलाने का प्रावधान है, उनके सबके साथों से वितरण कराया जाता है ताकि उसकी पारदर्शिता बनी रहे।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, इनका पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है?
1: वैसे भी मैम मध्य प्रदेश जो अपना है कृषि में अग्रणी है और ज़्यादातर जो किसान हैं पशुपालक भी हैं, और पशुपालन एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्या है आप मतलब पूरे साल भर आय ले सकते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो मतलब रोज की आय है उससे,
0: रोज की आए, सुबह शाम की आय,
1: सुबह शाम की आय है। लोगों को एक तो मनी इन हैंड अपन जो बोलते हैं वो रहता है उससे, फसल तो क्या 6 महीने में एक बार बिकती है, फिर उससे साल भर काम चलाना पड़ता है, लेकिन ये और फिर दूसरा पोषण स्तर पर बहुत सुधार होता है। मतलब जैसे कई लोग हैं भाई दूध है घर में हो रहा है तो घी दूध मीठा आसपास ना, वो एक पोषण स्तर भी जो अभी मैंने दुधारू की बात की उसमें पोषण स्तर भी मैं बोलना भूल गया, उसमें बेसिकली बच्चों का पोषण स्तर में सुधार हुआ है। जिनके घर में दूध होगा भाई आधा लीटर एक लीटर, जो जिनने कभी दूध नहीं देखा भाई परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, तो उनको कम से कम दूध मिल रहा है और घी दूध और शुद्ध मिल रहा है अपने घर का मिल रहा है। तो और क्या है लोग अच्छे पशु लाते हैं ना तो उनका रख रखाव भी अच्छे से करते हैं, पशुपालन में उनको पता चल रहा है कि अब क्या खिलाना है कैसे खिलाना है पशु को कैसे नहलाना है कैसे रखना है, मतलब रख रखाव प्रबंधन भी सीख रहे हैं, खान पान के साथ प्रबंधन दो चीज़ें बहुत जरूरी है, ये तो पशुपालक सीख जाएगा। और तो वही एनिमल जो अपने हैं वो भी अपग्रेड होंगे, उनमें अपन AI कराएंगे अपग्रेड होंगे, धीरे धीरे ये सुधार होगा ही पशुपालन।
0: क्या कुछ उनके पशुपालन के जो भोजन है उसमें भी कोई अनुदान है, उनके प्रबंधन में भी अनुदान है, क्या उस तरह का कोई स्कीम है सरकार?
1: मैम जो अपने दुधारू पशु प्रदाय है उसमें हम 3 माह का दाना भी देते हैं, मतलब 5 किलो पर पशु के हिसाब से उसमें दाना देते हैं।
0: बहुत है, हाँ।
1: लेकिन डेयरी प्लस में नहीं है क्योंकि उसमें मतलब योजना की कई लागत थोड़ी सी उसमें ज्यादा है, डेयरी प्लस में नहीं है, दुधारू पशु प्रदाय में है।
0: हाँ। मतलब एक एक योजना,
1: एक योजना
0: है,
1: में है
0: जिससे कि और किसान भाई फायदा ले सकते हैं,
1: किसान को फायदा ले सकता है। वैसे भी किसान क्या है मैम, जैसे जो किसान है उसके घर के हाउस होल्ड प्रोडक्ट इतने हो जाते हैं कि वो उनसे काम चला सकता है, चलाना भी चाहिए, तभी वो बोलते हैं सस्टेनेबल बनेगा, मतलब जो पैसा तभी वापस निकलेगा, इकोनॉमी तभी निकलेगी।

0: हम आगे बढ़ेंगे और एक हितग्राही से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी।
1: मैं श्रीमती शांति नागर, ग्राम हिनोती सड़क, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से हूँ। मुझे पशु चिकित्सक मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की जानकारी मिली। उसके तहत मुझे 2 मुर्रा भैंस एवं अच्छी नस्ल की दुधारू भैंस खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस योजना के द्वारा मैंने 1,47,500 रुपए जमा किए थे और इतनी ही रकम मुझे सरकार द्वारा दी गई, जिसमें 2,64,000 की 2 मुर्रा भैंसे और उनका आने का खर्च एवं हमारे आने जाने का खर्च, रहने का और भोजन व्यवस्था सहित सभी खर्च सरकार द्वारा दिए गए और भैंसों का 3 साल का बीमा भी उसी में करवा कर दिया गया। पहले भी मैं पशुपालन करती थी, पर पहले हमारे पशुओं का दुग्ध 35 से 40 लीटर हुआ करता था। अब अच्छी नस्ल की भैंसे आने से वह दूध बढ़कर 60 से 65 लीटर हो गया है, जो कि 65 रुपए लीटर में घर से ही बिक जाता है, जिससे हमारी आमदनी डबल हो गई है। हम संतुष्ट हैं। इस योजना को चलाने तथा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मैं सरकार और जिन्होंने इस योजना को हम तक पहुंचाने में सहायता

0: की गई है। सभी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।
1: ये थी शांतिबाई हितग्राही, जिन्होंने डेयरी प्लस योजना से स्वयं को लाभ पहुंचाया। हम आगे बढ़ेंगे और एक और हितग्राही से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी।
2: मैं कमल सिंह नागर, ग्राम ज्योति सड़क, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से हूँ। मैंने पशु चिकित्सक बैरसिया के माध्यम से डेयरी प्लस योजना की जानकारी मिली, जिसके पश्चात मैंने 1,47,500 रुपए की डीडी बनवा कर डॉक्टर साहब को दी। इनके माध्यम से मैंने 2 भैंसे खरीदी। 2 भैंसों का मूल्य मुझे 2,64,000 रुपए आया। इसमें भैंसों का ट्रांसपोर्ट, 3 साल का बीमा, मेरा आने जाने का व्यय उसी में रहा। मैं पहले से भी पशुपालन कर रहा था, परंतु उन्नत पशु न होने के कारण मेरी आय सीमित थी। परंतु मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के माध्यम से मुझे उन्नत पशु मिले और जिससे मेरी आय में वृद्धि भी हुई। और पशु विभाग के माध्यम से मुझे एक ऐसी जानकारी भी दी गई है जिससे पशु गर्भाधान में इसे भैंस को पड़िया ही प्रजनन होता है, ना कि पाड़ा। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के माध्यम से मेरे और मेरे परिवार की आय में वृद्धि भी हुई है, आज हम खुश हैं। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप भी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ लें और अपने परिवार को समृद्धि बनाएं, जिससे हम शुद्ध दूध घी हम भी खा सके और दूसरों को भी खिला सकते हैं।
3: ये एक स्थल रिकॉर्डिंग थी किसान भाइयों, जिसमें हम आए थे मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे, खेती किसानी के साथ पशुपालन को भी महत्व देंगे।
4: तो भैया रू, आपने जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम सुनो, इको संयोजन करो थो चंद्रशेखर शर्मा ने और रिकॉर्डिंग सहयोग दो थो अंशु तिलेठा ने। और अब चलवे की बिरिया हो रही मनो, चलवे से पहल किसान भैयारों को किसान बाणी कार्यक्रम में हम बता दें थोड़ी सी सामयिक तौर पे जानकारी। देखो ई बखत जो है मौसम जो है आप देख रहे हो, कई जगह बारिश हो रही है और कई जगह बारिश थम गई है। ऐसे में जो है विपरीत मौसम बन रहा है और सबसे ज़्यादा खेती किसानी में अगर हमारे किसान भाई देखें तो सोयाबीन की पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इको का वजह हो सकते हैं, पहली वजह तो जो है कि पानी की कमी हो रही है, दूसरी वजह जो है कि जस्ता की कमी हो रही है, और तीसरी वजह जो है कि आपके सोयाबीन में नींदा जो है आपके सोयाबीन से बड़ो हो गया हो। तो ये तीन ही बातों को ध्यान रखें, नींदा अगर बड़ो है तो नींदा निकाल दें, अगर जस्ता की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, तो उनकी पूर्ति जो है फर्टिलाइजर के माध्यम से करें और समय समय पर निराई गुड़ाई जरूर करते रहें। तो इन बातों को ध्यान रखें और अब चलवे की बिरिया, तो महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहा है?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
6: परम तो सब यही डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजने को अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेम पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं, तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का है और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे, जैसे अविनाश साबले हैं। स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है। पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति याराजी वापसी कर रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्वी

0: वहाँ पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहाँ जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
1: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाले के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहाँ जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले, उससे काफ़ी बचा रहे हैं।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफ़ी उम्मीद हैं। सर्वेश कुशारी भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
1: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहाँ पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आइची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडी

0: पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहां पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहां पार पाना पड़ेगा। लेकिन यहां चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं, विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहां पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशन है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशन कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखती हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बहुत मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
0: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखें यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से, इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 21-22 साल की 11 लड़कियां। तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखें, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अनान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का,

0: नहीं है और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मतियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें, किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैम्पियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैम्पियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैड

0: बैडमिंटन में हो सकता है. एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है. तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजीनक होया में वो बाहर आए.
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है. लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर. कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है. पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था. वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था. मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है. लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
2: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए. लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण. तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का. लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है. लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है. पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी. और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा. और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से.
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए. लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
0: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के. पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे. 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले. जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है. सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है. तो काफ़ी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा. साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था. उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहाँ पे भी एक टीम का बढ़िया सी ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली. तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है. और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है. एंड ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं. कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है. लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल. बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है. बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, जो स्वर्ण होने जा रहा है.
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है. पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था. मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी. मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं. 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए. तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा. और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है. पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही. तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी. उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में और हरजिंदर कौर है 69 किलो में. तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है. एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
0: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफ़ी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह दिया चताले, जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है, टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन, कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
0: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं, और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है, और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए, और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, धुन एसडी बर्मन की है, फिल्म काला बाजार।

कश्मीर की कली, लीजिए इस फिल्म में सुनिए SH बिहारी का लिखा ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे गाया मोहम्मद रफी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश 8:45 होने को है। अब समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को

0: वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
3: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय UPI के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में UPI लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच UPI आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
7: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
6: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गाँवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. the headlines. Prime Minister

0: Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है
0: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है
0: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved and more projects will be approved in the next phase.
2: The investment numbers that we are seeing today is of the order of

0: प्रति इदारों में आला तालीम हासिल करने वाले भूटान के तलबा के लिए नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप स्कीम में तौसी से मुतालिक मफाहमतनामे का भी तबादला किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसे तालीम और सलाहियत साजी के शोबे में भारत और भूटान के बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने वाला कदम करार दिया। जनाब जयशंकर ने वजीर आजम टोबगे और भारत में तैयार करदा 54 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत ई मोबिलिटी और पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भूटान की पेशकदमी की हिमायत कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 76वीं सालगिरह के मौके पर एक माह तक जारी रहने वाला मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान शुरू किया। जनाब मोदी 1950 में आज ही के दिन गुजरात के महसाना जिले में वाकई एक छोटे से शहर वडनगर में पैदा हुए थे। इस अभियान का मकसद वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के अज़्म को उजागर करना और लोगों खासतौर पर नौजवानों को अवाम की खिदमत के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। यह मुहिम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला के तौर पर नरेंद्र मोदी के हलफ लेने के 25 साल मुकम्मल होने के मौके से भी मुंसलिक है। यह मुहिम अगले माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस मुहिम का आगाज जनाब नरेंद्र मोदी के आबाई शहर वडनगर से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी को मुल्क मुकदम के उसूल से बेहतर तौर पर बयान किया जा सकता है। इस अभियान के पहले दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अतिया करने के कैंप लगाए गए हैं। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया और पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के साथ खून अतिया किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। आज शाम आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसके तहत खानदानों खासतौर पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफिदीन ने अवामी खिदमत में जनाब मोदी के 25 साल मुकम्मल होने पर तशक्कुर का इजहार करते हुए दिए जलाए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के वजीर आजम बनियामिन नेतन्याहू समेत दुनिया के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम मोदी को उनके 76वें यौम पैदाइश पर पुरजोश मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनकी क्यादत और तआवुन के लिए भरपूर सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस दौरान वो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अवामी फलाह बहबूद के पुख्ता अज़्म के साथ काम करते रहे हैं। सेवा और सुशासन के विजन से मुतासिर होकर हुकूमत जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए काम कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज में माई गोव प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके लिए इस विजन को अमली शक्ल देने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
1: 2014 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभाला तो उनके तर्ज हुक्मरानी में एक अहम तस्वर नुमाया तौर पर सामने आया। ये तस्वर आवाम और शहरियों के दरमियान बराह रास्त और मुसलसल राबता कायम करना है। इस नज़रिए के तहत जुलाई 2014 में भारत के शहरियों की शमूलियत के लिए प्लेटफॉर्म माई गोव का तस्वर पेश किया गया और इसे शुरू किया गया। ये प्लेटफॉर्म हुक्मरानी और पॉलिसी साजी में अवाम की साझेदारी को यकीनी बनाने का एक अहम जरिया बन चुका है।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गोव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: जुलाई 2026 तक तकरीबन 6.5 करोड़ शहरी माई गोव प्लेटफॉर्म पर अपना इंदराज कर चुके थे। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: دیہی ترقی و زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مواقعوں کی نشاندہی کریں کہ کس طرح وکست بھارت جی رام جی اسکیم گاؤں کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اسکیم سے متعلق ایک قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے زور دے کر کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسکیم کو پائیدار اثاثے قائم کرنے اور دیہی برادریوں کے لیے دیرپا فائدے اور دیہی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہونا چاہیے۔ جناب چوہان نے سبھی عہدیداروں سے اچانک معائنہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسکیم کے تحت شروع کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ کوئلے کی وزارت نے آج نئی دلی میں کمرشل کوئلہ کانوں کی نیلامی کے 16th دور کا آغاز کیا۔ اس مرحلے میں 25 کوئلہ بلاکس کی نیلامی کی جا رہی ہے جن میں 21 کانیں مکمل طور پر اور 4 جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں۔ یہ کانیں کوئلہ پیدا کرنے والی 9 ریاستوں میں واقع ہیں۔ وزارت کے مطابق آج کی تاریخ تک کل 147 کوئلہ کانوں کی نیلامی کی جا چکی ہے جسے سالانہ متوقع آمدنی 47,500 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ سپریم کورٹ نے آج ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای سے کہا ہے کہ وہ چھٹی جماعت کے طلبہ کے لیے لازمی طور پر 3 زبانوں کی پالیسی کو 2027 کے تعلیمی سیشن تک مؤخر کرنے پر غور کرے تاکہ طلبہ کو نئے نظام میں منتقل ہونے میں آسانی فراہم ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش آج پورے مغرب بنگال میں انپورنا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انپورنا یوجنا مغربی بنگال میں خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل کو تیز کرنے میں اہم رول ادا کرے گی۔ مردوں کی کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی بین الاقوامی T20 سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 221 رن بنائے ہیں اور افغانستان کو جیت کے لیے 222 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت شروعاتی 2 میچ جیت کر پہلی ہی سیریز اپنے نام کر چکا ہے۔ اور اب خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے سپلائی چین کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا۔ سیمیکون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم جناب مودی کی 76th سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेवा संकल्प अभियान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने पर देश और प्रदेश में चलाया जा रहा है। राजनीति और शासन में जनसेवा का सफर जब एक लंबा रूप लेता है तो वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रह जाती बल्कि देश के विकास का अध्याय बन जाती है। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 बरस पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान की चर्चा कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ अतीत के आकलन का नहीं बल्कि भविष्य के रोडमैप का भी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक नेतृत्व से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक शासन नीतियां और जनसंवाद के कई नए मानक स्थापित किए गए हैं। आज इसी सेवा संकल्प अभियान के विभिन्न पहलुओं, उपलब्धियों और कड़े फैसलों के पीछे की दृष्टि को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण मोहन झा जी। आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर।
5: धन्यवाद अभिषेक।
6: धन्यवाद।
4: चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की निरंतरता, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर होती है। इस पूरे कालखंड को और
5: सेवा संकल्प अभियान को आप किस नजरिए से देखते हैं?
6: देखिए,

0: अभिषेक जी, यहाँ एक छोटा सा मैं फर्क करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो सार्वजनिक जीवन है वो तो 25 वर्ष से कहीं अधिक का है
1: जी।
0: हम जब बात कर रहे हैं तो वो 25 वर्ष सरकार के मुखिया के रूप में उनके कामकाज की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जब लगभग ढाई दशक की जो यात्रा है, ये ढाई दशक की यात्रा शासन की जिम्मेदारी संभालने की यात्रा है
1: जी।
0: और इसको मैं तीन चरणों में देखता हूँ। इसमें पहला चरण जो है वह गुजरात में प्रयोग का है, जहाँ पर कि ग्रामीण बिजली की व्यवस्था, कृषि महोत्सव, किसान की सरकार तक पहुँच, कन्या शिक्षा, शाला प्रवेशोत्सव, बालिका शिक्षा, स्वागत जैसा कार्यक्रम जो तकनीक पर आधारित संपर्क था लोगों का, और वहाँ पर एक तरीके से समुदाय को लक्षित करके काम हुआ
1: जी।
0: दूसरा चरण इसका राष्ट्रीय विस्तार का है
1: जी।
0: 2014 के बाद जनधन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये इस तरीके के तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो पूरे देश को अपने दायरे में लेते हुए उन्होंने अपने काम को विस्तार दिया था
1: जी।
0: और फिर तीसरा चरण है जो सेचुरेशन और विकसित भारत का है, यानी अब केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इतने करोड़ लोगों को हमने लाभ दे दिया, इतने करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच बन गई। सवाल यह है कि पात्र लोगों में से कोई छूट न जाए, जो छूटा हुआ है उस तक पहुंच बनाना। इसलिए सेवा संकल्प अभियान को मैं केवल 25 वर्षों की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में नहीं देखता हूं, मैं इन 25 वर्षों के अनुभव को आगे की जिम्मेदारी से जोड़ने के अवसर के रूप में भी देखता हूं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अगला सवाल कृष्ण मोहन जी आपसे है मेरा। अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्रित्व काल की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहा है। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक शैली की सबसे बड़ी खासियत आप क्या समझते हैं?
2: देखिए अभिषेक जी, जिस समय जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उस समय बहुत जो स्थितियां थी बड़ी विकराल रूप ले चुकी थी। गुजरात की जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था
1: जी,
2: कोई टिक नहीं पा रहा था। ऐसे दौर में लग रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति वहां सर्वाइव कर पाएगा
1: जी।
2: सबसे बड़ी चुनौती वहां पे स्थायित्व को लेकर के थी, व्यक्ति के स्थायित्व की लेकर के थी। भाजपा निश्चित रूप से वहां पावर में थी, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए बहुत गहरे निर्णय की जरूरत थी। और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, बहुत जिस ढंग से वहां पे आप देखे होंगे कि राजनीतिक उठापटक का दौर था, पार्टी टूट रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में। और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके जो प्लानिंग का ही परिणाम था कि 2014 तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे, गुजरात देश में विकास के मॉडल के रूप में डेवलप हुआ। यदि इन 14 वर्षों में यदि आप देखते हैं कि 2001 से लेकर 14 तक का, तो गुजरात में जितनी नई इंडस्ट्रियाँ लगीं, जो सिक यूनिट थी वो तेज़ी से बढ़ी, गुजरात का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। और यही वजह है कि आज भी हम बात करते हैं तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात को आदर्श के रूप में देखते हैं। तो जब 2014 की बात भी मैं जब करता हूँ, जब मोदी जी को कहा गया कि अब वो भारत की कमान संभालेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बड़े बड़े दिग्गज थे, क्योंकि मैंने लगातार 2012 से उन पर आर्टिकल लिखना शुरू किया था, तो मेरे को ध्यान है, मैंने दो किताबें भी लिखी हैं
1: जी।
2: तो 2012 में जब उनको उनके नेतृत्व में ये हुआ कि फिर से मुख्यमंत्री बने वो, और उसके बाद ये तय किया गया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुआ कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनको चुनाव की कमान सौंपी जाएगी
1: जी।
2: जो भाजपा के तमाम दिग्गज थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, जैसे राजनाथ सिंह तो खैर उनके साथ में थे
1: जी।
2: ऐसे में उनको आगे लाया गया और आप देखिए कि उनके नेतृत्व का चमत्कार था कि 2014 में वो प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने ली 26 मई को, और उसके बाद से बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि UPA के शासनकाल में जिस ढंग से करप्शन लगातार उठ रहा था, रोज आए दिन कोई ना कोई करप्शन के मामले आते थे
1: जी।
2: और परिस्थितियां देश की बड़ी डावाडोल थी
1: जी।
2: अब इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि जब प्रधानमंत्री पहली बार कोई भाषण दे रहा हो लाल किले में, तो उसको ये बात करनी पड़ रही कि भैया हमें दिवाली की जरूरत नहीं है, लेकिन घरों में शौचालय की जरूरत है, बेटियों की सुरक्षा की जरूरत है, हमें दिवाली हम बाद में स्थापित करेंगे। और उन्होंने 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आप देखिए कि जो स्वच्छता अभियान भारत में, क्योंकि गिरीश जी ने बहुत करीब से राजनीति को देखी है, वो समझते हैं कि किसी लीडर की मास अपील कैसे हुआ करती थी। यदि लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, मुरारजी देसाई की बात करें, तो उनकी अपील को लोग स्वीकारते थे, लेकिन एक लंबा अंतराल हो गया था कि किसी लीडर की अपील को स्वीकारना बड़ा कठिन था। लेकिन वैसे में आप देखिए समग्र स्वच्छता अभियान जब चला, तो जब आप सड़क में कचरा डालने के लिए बिल्कुल निसंकोच डाल देते थे, लेकिन जब अभियान जब चला तो आपको नैतिकता

0: पता चला और आप अपने दायित्वों का निर्वहन करना शुरू किए, तो उस देश की कमान एक प्रधानमंत्री के हाथ में आई जिसको स्वच्छता की बागडोर भी संभालना था, स्वच्छता की अपील भी करना था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या रही होंगी। और ऐसे दौर में उन्होंने कार्य संभाला और बखूबी निभाते हुए 2019 का चुनाव उन्हें जीता, और 2024 में भी हमने देखा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं जो स्वच्छता आंदोलन शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल से, वो एक ऐसा अभियान बनकर आया जो कि आज हम स्वच्छता को जी रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कई सरकारों को हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई सारी बातें की गई, लेकिन जिस रूप में आज वो अभियान घर घर का हिस्सा बन चुका है उस रूप में पहले कभी नहीं हुआ। अगला सवाल गिरीश जी मेरा आपसे है, अब अगर हम बात करें किसी भी देश की शासन प्रणाली की, तो शासन प्रणाली का जो तरीका होता है वो ही देश के सकारात्मक नतीजों को तय करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कार्य संस्कृति और प्रशासन के तरीकों में क्या कुछ बड़े बदलाव आए हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
2: अभिषेक जी, मोदी सरकार की जो शासन शैली है उसको समझने के लिए सिर्फ उनके द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं को ही देखना नहीं होगा
1: जी,
2: बल्कि सरकार काम कैसे करती है, सरकार को काम कैसे करना चाहिए, इसमें जो बदलाव आया है उसको देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला बदलाव जो मैं समझता हूँ वो है मिशन मोड पर काम करना
1: जी।
2: किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लें अगर, तो विभाग योजना बनाकर देते हैं उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन समयबद्ध अभियान के रूप में उसको लेना, और जैसा अभी कृष्ण मोहन झा जी ने कहा भी कि स्वच्छ भारत इसका सबसे बड़ा और सबसे बिल्कुल सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले उदाहरणों में शामिल है
1: जी।
2: दूसरा है कि तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, इस समय टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के लिए कैसे सुविधाएं जुटा सकती है, तो हम अगर देखें तो जनधन, आधार, मोबाइल यानी पूरी जैम व्यवस्था और डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम है, सीधे सहायता लाभार्थियों तक पहुंचाना, उसके खातों तक पहुंचाना, और इसमें बिचौलियों और लीकेज को बीच में से हटाना, ये एक बड़ा काम हुआ है। तीसरा है कि उसका किसी भी काम की प्रत्यक्ष समीक्षा और मॉनिटरिंग, और मैं अगर पीछे थोड़ा सा जाएं तो इसकी जड़ गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वागत जैसे प्रयोग में दिखाई थी, जहां पर के लोगों की समस्याओं को सीधे सुना जाता था और तकनीक के जरिए वो नागरिकों से बात करते थे, समीक्षा करते थे, तो ये एक अलग तरीका है। आगे चल के उन्होंने प्रगति योजना केंद्र में लागू की। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है कन्वर्जेंस, तमाम योजनाओं को एक साथ मिलाकर लोगों के हित के लिए काम करना। बहुत सारी योजनाएं समन्वित रूप से लोगों के जीवन को किस तरीके से सुविधाजनक बना सकती हैं, उनकी परेशानियों को कम कर सकती हैं, तो कुल मिला के ये। और पांचवा है कि सैचुरेशन, मतलब जो छूट गया है
1: जी,
2: उसको भी पहचान करके, उसको भी चिन्हित करके उस तक उन योजनाओं का लाभ उठाना। तो पहले सरकार की सफलता का पैमाना यह था कि उसने कितनी योजना बनाई और कितना पैसा खर्च किया, लेकिन अब उस पूरे विचार का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसका लाभ जमीन पर किसको और कितना मिला, ये फर्क है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, अभी आपने तकनीक की बात करी, कई सारी ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिनकी मॉनिटरिंग में तकनीक का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही जो DBT और जनधन खातों की योजना को शुरू किया, उसके परिणाम आज दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि कितना दूरदर्शी कदम उस वक्त 2014 के कार्यकाल में सोचा गया था, वो आज उसके सकारात्मक परिणाम हमको प्रभावी रूप में दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण मोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, ढाई दशकों के इस लंबे दौर में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई चुनौतियां भी आईं, आप इस दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धियों और चुनौतियों को किस रूप से देखते हैं?
0: देखिए अभिषेक जी, मोदी जी का जो कार्यकाल है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है
1: जी,
0: और इस कार्यकाल को किसी एक उपलब्धि के तौर पर देखना नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भारत की कमान NDA के पास आई तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति, हमारी विदेश नीति और हमारी आंतरिक स्थितियाँ बहुत विपरीत थी, बहुत अनुकूल नहीं थी। ऐसे में सबसे पहला उनका अभियान था समग्र स्वच्छता का अभियान
1: जी,
0: फिर उन्होंने जनधन की जो योजना खोली, आप देखिए कि करोड़ों जो लोग थे जिनके खाते नहीं थे, किसी और खातों में पैसे जाया करते थे, जैसे कि अभी गिरीश जी बता रहे थे कि जो डायरेक्ट लाभ की जो बात हुई
1: जी,
0: जो लाभान्वित व्यक्ति को पहुंचना करके बिचौलियों के माध्यम से जाता था, उसको रोकने के लिए जब खाते खोले जा रहे थे तो विपक्ष ने बड़ा तांडव मचाया कि अरे इनको क्या जरूरत है, क्यों खोला जा रहा है। फिर उन्होंने खातों के साथ साथ सुरक्षा की बात की, बीमा भी करके दिया, 3 लाख से 5 लाख तक का बीमा भी करके दिया। तो ये जो जनधन योजना खुला, तो पहले लोगों ने सोचा नहीं था कि इसका क्या है, लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे करके चीज़ें आपके अनुकूल होते रही।

0: आधार को कंपलसरी किया, मोबाइल नंबर को कंपलसरी किया। उसके बाद फिर उनका जो दूसरा सबसे बड़ा जो निर्णय था वो ही निर्णय जो था गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
1: जी,
0: कि सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि आप जब गरीबी जो थी, क्योंकि उनके खाते में पैसे जाते थे वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, तो उसे उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की
1: जी।
0: तो उज्ज्वला योजना में खासतौर पर आप देखिए कि ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, परिवेश बहुत करीब से देखा हुआ है, तो महिलाएं जो हैं लकड़ी से खाना बनाया करती थी, उनकी आंखों में बहुत तकलीफ होती थी, तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस टंकी प्रोवाइड की गई, चूल्हे प्रोवाइड किए गए और सस्ती दरों पे गैस टंकी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया
1: जी।
0: इसके अलावा देखिए कि आयुष्मान योजना, जिसमें स्वास्थ्य, क्योंकि सुरक्षा की बात हो रही है
1: जी,
0: समाज की सुरक्षा कैसे हो, तो उन्होंने 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दिया, जिससे सरलता से स्वास्थ्य की जो सेवाओं का लाभ मिल पाए। और आप देखिए आज ये स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े अस्पताल जो है आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को लाभ देना चाह रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके स्वार्थ भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सरकार की जो योजना, सरकार की जो मंशा थी वो बहुत क्लियर थी
1: जी।
0: नोटबंदी के बाद आप देखिए कि जिस ढंग से डिजिटल प्रयोग हुआ, लोग कह रहे थे कि भाई डिजिटल कैसे होगा, भारत में तो नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन जिस ढंग से 4G और 5G आए, एक समय आप ध्यान, आपको ध्यान होगा कि स्पेक्ट्रम का लगातार घोटाला होता, 2G 3G घोटाला हुआ, बड़े बड़े मंत्री जेल चले गए, लेकिन ऐसे दौर में 4G और 5G का उपयोग हुआ और आज हमें बड़ा गर्व होता है कि हम विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में जाने जाते हैं जो डिजिटल पेमेंट के रूप में सबसे आगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है। अब इसके बाद भी करें तो जब हम युवा अवस्था में थे, जब आपसे चर्चा भी हो रही थी, तो हम लोग जब कदम रख रहे थे 18-19 साल के थे, तब एक संकल्प लोगों के मन में था कि राम मंदिर का निर्माण हो
1: जी।
0: तो राम मंदिर का निर्माण भी करोड़ों लोगों की आस्था की बात थी, लाखों करोड़ों लोगों के मन में भाव था कि हमारे जीवित रहते हुए हमारे ग्रैंडफादर फादर ये चाहते थे कि कम से कम मंदिर तो बन जाए
1: जी।
0: तो उनकी एक आस्था को पूरा करने में भी मोदी जी का महत्वपूर्ण रोल रहा। कानून व्यवस्था के तहत सारी चीज़ों को उन्होंने अमलीजामा बनाया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी देखिए कि जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया, जो आपने कहा ना कि ऐसे निर्णय, ये आत्मघाती निर्णय, यदि आप देखिए नोटबंदी की बात करते हैं तो गिरीश जी जानते हैं कि जिन जिन देशों ने नोटबंदी की वहाँ सरकार हिल गई, लेकिन 2019 में भाजपा भारी बहुमत से अकेले के दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस बात को दे सकते हैं कि नोटबंदी करने के बाद भी वो लोगों ने स्वीकार किया उनको
1: जी।
0: ऐसी ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो अनुच्छेद 370 की बात हो, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और नारी शक्तियों की बात आप देखिए कि नारी शक्तियों के लिए किस ढंग से उन्होंने किया। अभी आपने देखा कि लोकसभा में स्पेशल विधेयक लाया गया, आरक्षण की बात की गई। ये बात अलग है, ये दुर्भाग्य था कि विपक्ष इसमें साथ नहीं दिया और वो विधेयक गिरा, लेकिन मेरे को लगता है कि देर सवेर सब चीजें होंगी। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, एक व्यक्ति एक नागरिकता जो होना चाहिए, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, वो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो तमाम चुनौतियां थी, यानी आप जब युवावस्था में देखते रहेंगे कि चीजें ऐसा लगता था कि कभी पूरी हो नहीं सकती, ये तो स्वप्न था, लेकिन वो स्वप्न जो है धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। हमारा देश विदेश के सामने एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज यही वजह है कि आज जो विदेशी जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र बताने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ट्रंप जैसा व्यक्ति वो तक कहता है कि मोदी इज माय फ्रेंड। तो आज हमारी भूमिका केवल दोस्ती निभाने की नहीं है, आज हम संधि करने की स्थिति में भी हैं। जब ईरान और अमेरिका की बात आ रही है तो उस जगह पर भी हम वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी भूमिका होती है। तो आज हम हमारी जो शक्ति है लगातार बढ़ रही है, तो मोदी जी की ये ताकत है, मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से जो सेवा संकल्प जो मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, चाहे हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर जो चुनौतियां रहीं या कुछ कड़े फैसले हुए, कहीं ना कहीं जब कोई बीमारी होती है उसके हमें अच्छे परिणाम चाहिए होते हैं, उसका सही इलाज होता है, तो दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो चुनौतीपूर्ण फैसले थे, चाहे नोटबंदी की बात हो या फिर GST जैसे फैसले हों, वो सब कहीं ना कहीं उस सकारात्मक बदलाव के लिए पीने वाली कड़वी दवाई थी जिसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया। गिरीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब हम एक अच्छे सकारात्मक नेतृत्व की बात करते हैं तो उस नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण माना जाता है उसका संचार कौशल, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संचार कौशल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिनके संवाद को लोग समझते हैं और अनुपालन भी करते हैं, चाहे रेडियो पर मन की बात हो या आम सभाएं, उन्होंने संवाद का एक नया मॉडल पेश किया। जनसंवाद की उनकी इस खास शैली को आप किस तरह से विश्लेषित करना चाहेंगे?
2: देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को अगर समझना है तो उनकी संवाद क्षमता को अलग करके देख ही नहीं सकते
1: जी,
2: वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और मन की बात जो रेडियो पे आता है वो इसका सबसे सशक्त उदाहरण है।

0: अब उन्होंने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही क्षमता से उन्होंने रेडियो जैसे एक पुराने माध्यम को चुना
1: जी,
0: और उसके विषयों को, उसके प्रसार की क्षमता को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने का काम किया
1: जी।
0: और न सिर्फ उन्होंने इसमें लोगों से संवाद किया बल्कि सरकार की नीतियों के को भी लेकर भी बात की, उनको जागरूक करने का, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, खेल, परीक्षा, स्थानीय उत्पाद, संस्कृति, मतलब छोटे छोटे प्रयासों को उन्होंने उस माध्यम से उठाया है। दूसरे उनके संवाद की जो विशेषता है वो है कि जटिल से जटिल सरकारी विचार को छोटे और याद रख सकने वाले ऐसे सूत्रों में बदलना, वो सूत्रों में बात करते हैं
1: जी।
0: जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोकल फॉर लोकल
1: जी,
0: एक पेड़ माँ के नाम, ये सूत्र हैं। ये सूत्र लोगों को सहजता से याद रह जाते हैं, तो वो सूत्र देकर लोगों को एक तरीके से अभियान में संलग्न करने की क्षमता रखते हैं। छोटी बात होती है लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। और तीसरा पक्ष उनका है जो उनके संवाद और संचार का, वो है कि नागरिकों को किसी भी जन कल्याण के अभियान में सहभागी बनाने की कोशिश
1: जी।
0: अब स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू उठाना हो, खादी खरीदने की अपील हो, स्थानीय उत्पाद अपनाने की बात हो, या परीक्षा पे चर्चा, संदेश उनका यह रहता है कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती
1: जी,
0: लोगों को भी भागीदार बनना पड़ेगा, नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा। और जब लोग आगे आते हैं तो हमने देखा है उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही आप इंदौर का उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सामने है
1: जी।
0: ये केवल सरकार का काम नहीं था, इंदौर के लोगों ने तय किया और इंदौर को स्वच्छता में सर्वोच्च बना दिया। तो ये जो चीज़ें हैं एक माहौल बनाने वाली बात है। तो मैं कहूँगा कि मोदी जी की जो संवाद शैली है उसमें संवाद और जनसंचार, उसके परंपरागत और आधुनिक दोनों माध्यमों का एक बहुत कुशलतापूर्वक समावेश करके वो चलते हैं
1: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर देश के सामने आने वाली चुनौतियों की अगर हम बात करें, उस दौर में भी प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई अपील की तो देश के प्रत्येक नागरिक ने उसको माना है, चाहे वो अभी आज के युद्ध के दौर में सोना ना खरीदने की अपील, कम खर्च करने की अपील, या किसी भी तरीके की हम इस तरीके की चुनौतियों से पार पाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान किए गए, उन सबको हमारे देश के नागरिकों ने उसी रूप में माना। कृष्ण मोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आज के दौर में राजनीति और जनता के बीच की दूरी बढ़ रही है, ऐसे माहौल में सेवा संकल्प अभियान आम लोगों के लिए क्या संदेश देता है?
2: देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता
1: जी
2: कि जो मोदी जी का कार्यकाल मैं देखता हूँ 2014 से लेकर के आज तक, तो जनता और नेताओं के बीच दूरी नहीं, उन्हें तो बाध्य कर दिया है। यदि आपकी दूरी बढ़ रही है इसका मतलब आप राजनीति से दूर होते जा रहे हैं
1: जी।
2: ऐसे लोगों को राजनीति से वो अलग करने की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सोशल मीडिया उनका देख लीजिए। तो आप चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे कोविड में ताली थाली की बात हो, चाहे जैसे कि अभी आपने कहा कि सोना खरीदने की बात हो, युद्ध के दौर में जो सबको एक साथ लेने की बात हो, तो देश में जनता सीधे सरकार के साथ है और उन्होंने ऐसा कर दिया है। मोदी जी का जो नेतृत्व है उन्होंने ऐसा समझा दिया है लोगों को, खासतौर पर राजनेताओं को, कि यदि आपने जनता से दूरी की इसका मतलब आप दूर हो गए। आज आपका जो टिकट का जो आधार है वो आपके कार्यों से नहीं है, आपकी कितनी निकटता है, आपके कितने फॉलोअर हैं, आप कितना कार्य कर रहे हैं, आज 5 साल का लेखा जोखा उनका पूरा देखा जा रहा है, उसके बाद उनकी स्थितियों क्लियर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो अभी जो उन्होंने सेवा संकल्प अभियान की बात जो नितिन नवीन ने की है, जिस ढंग से आशीर्वाद का दिया, जो लाभार्थी परिवार हैं उनके घर में जो है दीप प्रज्वलित की जाए, ये बात बहुत जरूरी है कि आप काम तो करते जा रहे हैं लेकिन उस कार्य का असर क्या हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोग स्वप्रेरित होकर के आपके साथ आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों के समीक्षा का भी दौर है और उस दिशा में मेरे को लगता है कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान, कि जन भागीदारी से सेवा गतिविधियां कैसी बढ़े। इसके अलावा आप देखिए कि सेवा की कहानी, किस ढंग से सेवा की कहानियां की गई
1: जी,
2: किस ढंग से सेवा की गई, किस ढंग से समर्पण से कार्य किया गया, ये सब चीज़ें जो है इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वच्छता एवं जन सेवा गतिविधियां, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, युवा सहभागिता, चित्रकला रचनात्मक प्रतियोगिताएं, सेवा यात्राएं, तो ये जो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जनता से सीधे भागीदारी की बात है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर अभियान किसी भी प्रकार की दलगत सोच से हमेशा ऊपर होता है, सिर्फ पार्टी विशेष को नहीं बल्कि पूरे देश को एक इकाई मानकर ही वो चीजें चलाई जाती हैं और जनता भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से हटकर ही उस अभियान को आत्मसात करती है। गिरीश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज का युवा, आज के दौर में युवाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि युवा ही आने वाले देश का भविष्य है। अपने नेतृत्व से बहुत कुछ सीखते हैं ये युवा और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, तो 25 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा से देश के युवाओं के लिए क्या मुख्य सीख निकलती है?
0: देखिए अभिषेक जी, जब

0: हम युवाओं की बात करते हैं, उनकी सीख की बात करते हैं कि वो क्या सीखते हैं अपने नेतृत्व से, तो हमको सबसे पहले तो इस बात को किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध से अलग होकर देखना पड़ेगा
1: जी।
0: जो वस्तुनिष्ठ होकर ऑब्जेक्टिव होकर बात करनी पड़ेगी। और अगर उस दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी के स्वयं के और इस सरकार के काम से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे युवा आगे अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उसको कर सकते। पहली सीख है कि उसकी निरंतरता, किसी भी काम की कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी
1: जी,
0: उसका टिकाऊपन। तो बड़े परिणाम कभी आपको बहुत जल्दी नहीं आते
1: जी,
0: एकदम से। 2001 में उन्होंने गुजरात से अपनी यात्रा शुरू की थी और ये इसी शासन यात्रा का विस्तार जो है वो बाद के वर्षों में दिखाई देता है। दूसरा है छोटी भी समस्या को छोटा न समझना
1: जी।
0: जैसे अभी बात कर रहे थे अभी कृष्ण मोहन जी भी, कहाँ से शुरू किया, शौचालय चाहिए, स्वच्छता चाहिए। लाल किले से अगर ये बात हो रही है तो अपने आप में उसके महत्व को समझा जाना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री इतनी बात कैसे कर रहे हैं। उन्होंने शौचालय, बैंक खाता, गैस, पानी, मिट्टी की जांच, बेटी का स्कूल जाना, ये सुनने में बहुत सामान्य विषय लग सकते हैं लेकिन ये आम जनता के लिए
1: जी,
0: देश को देश बनाने के लिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और जब ये समस्याएं करोड़ों लोगों की है तो फिर एक तरीके से वो सामान्य राष्ट्रीय प्रश्न बन जाती है, तो ये सीख लेने की जरूरत है। तीसरा है कि तकनीक को अपनाना। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तकनीक को हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, और तकनीक को अपनाने का मतलब है कि वो जन सुविधा के लिए अपनाना। हमने पहले भी बात की कि गुजरात में उन्होंने जब लोगों की शिकायतें सुनने के लिए स्वागत जैसा कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्ट बेनिफिट योजना चलाई, तो ये तकनीक अंततः नागरिकों की सुविधा के लिए हो, इस बात को करना। चौथा है संवाद कौशल, जिसकी अभी हमने इससे पहले भी बात की
1: जी।
0: आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना। और लक्ष्य बड़ा रखना, आप अपना लक्ष्य बड़ा रखेंगे आप बड़े परिणाम पा सकेंगे। आज हम जैसे हम कह रहे हैं कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही, तो ये बड़े लक्ष्य हैं। और ये है कि आप उनका अगर हम सूत्र में कहना चाहें तो उनका जो संदेश है वो है कि बड़ा सोचें, छोटे काम से शुरुआत करिए लेकिन स्थिरता के साथ करिए और परिणाम आने तक अपने आप को निरंतर बनाए रखिए।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसा ही हर क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। अगला सवाल कृष्ण मोहन जी मेरा आपसे है, 25 वर्षों की यात्रा केवल अतीत के आकलन तक सीमित नहीं है बल्कि इस पृष्ठभूमि के साथ सेवा संकल्प अभियान भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में किस प्रकार मील का एक नया पत्थर साबित हो सकता है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं सर।
2: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न अभिषेक आपने किया है कि 2047 का लक्ष्य, आप सोच सकते हैं कि आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और 47 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं
1: जी।
2: तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य हमारे सामने कुछ चीज को होता है तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। आज हमारे जो कार्य हैं, जो न्यू हमारी है, वो हमको वहाँ सफलता की ओर ले जाएगी। तो ये जो 10 संकल्प इन्होंने जो लिया हुआ है, समृद्ध और मजबूत अर्थव्यवस्था, गरीबी का उन्मूलन, ये माने कि भारत जो आज तक गरीब राष्ट्र कहलाता था वो खत्म हो जाएगा, युवा शक्ति को विकास की ताकत बनाना, क्योंकि आप देखिए कि जो युवाओं में, क्योंकि हमारी युवा जिस ढंग से आज अभी ताकत दिखा रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है
1: जी।
2: तो निश्चित रूप से उस शक्ति का अच्छे से उपयोग हो पाना, क्योंकि हमारा युवा तो पलायन कर जाता था, वो विदेशों में चला जाता था, उसको यहाँ रोके रखने के लिए मेक इन इंडिया जैसे अभियान चलाए गए। और मेरे को लगता है कि आने वाले 2047 तक इसको और मजबूत करने का प्रयास है। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किस ढंग से कृषि को, जो हम कहते थे कि बहुत ज्यादा लाभकारी धंधा नहीं था, उसको लाभकारी बनाया जाए, किस ढंग से जो ग्रामीण की अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम से आप देख रहे हैं कि हम चाहे गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो हमारी जो दूरियां थी शहर की और गांव की वो सब मिट गई है। अब आप गांव में भी रह करके वही कार्य कर सकते हैं जो शहर में कार्य कर सकते हैं। महिला शक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये पूरा अभियान है, क्योंकि आपने देखा कि संसद में स्पेशल विधेयक है, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। और लगातार महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्र में हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और 2047 में पूर्ण रूप से महिला का जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसका प्रयास होगा। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो भारत की सबसे जो आज तक की स्थिति थी 2014 के पहले, हम देखते थे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य में हमारे पास उपकरणों का अभाव था, हर जो छोटी जगहों से हमको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता था। टेक्नोलॉजी और AI में नेतृत्व, भारत लगातार, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हम विश्व के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में हम उभर के आए। तो निश्चित रूप से AI टेक्नोलॉजी को किस ढंग से विकसित किया जाए, 2047 तक हम हर क्षेत्रों में AI के माध्यम से आगे बढ़ पाए। आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत, किस ढंग से हम जो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर और अन्य राजनीतिक क्षेत्र हो, उनमें हम जो है उत्पादन खुद कर पाएं, हमें विदेशी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। पर्यावरण के साथ विकास, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के भी सरकार बहुत चिंतित है, उसका प्रयास है कि विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और ऊर्जा दक्षता इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 2026 के अध्ययन में विकसित भारत के लक्ष्य को 2070 के नेट जीरो के लक्ष्य के साथ जोड़कर देखा गया है। सुरक्षित और वैश्विक नेतृत्व वाला भारत, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सुरक्षित भी हों और विश्व का नेतृत्व भी कर पाए। मोदी जी ने बात बताई, आज विभिन्न समयों पे आपने देखा कि जिस ढंग से पहले तो पड़ोसी देश जो है हमको आंखें दिखा दिया करते थे, आज वो स्थिति में नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे अन्य जो देश है, वो कहीं ना कहीं आज हमसे दबे हुए हैं, आज हमारे कंट्रोल में है। तो आर्थिक शक्ति के साथ मजबूत रक्षा क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता, सुरक्षित सीमाएं और वैश्विक संस्थाओं में प्रभावी भूमिका, ये हमारा प्रयास है। ऐसे 10 जो हैं 2047 का रोड मैप मोदी ने तैयार किया हुआ है और मुझे लगता है कि 2026 में इसकी नींव रखी जा रही है और 2047 आते आते हम इसको पूर्ण कर लेंगे।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने जैसे अभी चर्चा की, भारत की वैश्विक साख में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अगला सवाल गिरीश जी से मेरा इसी विषय पर है। बीते वर्षों में जो भारत की वैश्विक साख है वो काफी बड़े बदलाव से गुजरी है। दुनिया के मंचों पर भारत की मजबूत स्थिति बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की क्या कुछ भूमिका रही, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए अभिषेक जी, इस पूरे कार्यकाल को हम देखें तो भारत की वैश्विक उपस्थिति हमको और मुखर और सक्रिय दिखाई दे रही है
1: जी,
0: और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति और भारत की विश्व स्तर पर उपस्थिति अपनी रीढ़ को सीधी रखते हुए है, रीढ़ को झुकाते हुए नहीं है
1: जी।
0: तो भारत ने अपने अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया है और विश्व में उसको मान्यता मिल रही है, दोनों स्तरों पर हुआ है। प्रधानमंत्री एक नेता के तौर पर और नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के तौर पर उन्होंने विश्व के कई नेताओं से संबंध बनाए, कई देशों से संबंध बनाए और G20 की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकी देशों के संघ को उसमें शामिल करना, फिर क्वाड हो चाहे SCO हो, अभी अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन का समाप्ति हुई और विश्व के बड़े नेता भारत आए और भारत की आवाज को उसमें महत्व दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये दोनों तरह से निर्भर करता है, देश जब आगे बढ़ता है, देश जब मजबूत होता है, उसकी क्षमता होती है वो, और विश्व के नेता उसको जानते हैं कि जिसको देश का समर्थन प्राप्त है। इन दोनों स्तरों पर भारत की विदेश नीति को महत्व मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता भी मिली।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेवा, सुशासन और संकल्प अपने आप में यही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की सफलता के परिचायक हैं। आज की इस सार्थक चर्चा से स्पष्ट है कि 25 वर्षों का यह सार्वजनिक जीवन केवल सत्ता का सफर नहीं बल्कि सेवा ही संगठन और भागीदारी की एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक है। इससे साफ है कि सेवा संकल्प अभियान आम जन के मन में कर्तव्य बोध जगाने का एक सशक्त जरिया है। 2047 के विकसित भारत का सपना हो या आज के युवाओं के लिए निष्ठा और निरंतरता का संदेश, यह यात्रा कई दृष्टिकोण से प्रेरणादायी है। आज की इस बेहद ज्ञानवर्धक परिचर्चा में शामिल होने के लिए दोनों ही अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस खास चर्चा में हमारे साथ बने रहे। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजों में, मखदूम मोइदून ने इस गीत को लिखा संगीत खयाम का, फिल्म है बाजार।

स्वयंवर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत पाकीज़ा फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कमाल अमरोही की शब्द रचना, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

आन मिलो सजना। यह कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं आपको, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: यह आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योति ग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जन सेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक।

0: मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
1: एक पत्रकार के तौर पे मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात, वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए, उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था, उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
0: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला?
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99

0: सत्य जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहाँ कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसके वो कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में चार चार छः छः घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा, बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
3: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है। लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है, जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोड़ दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था, तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, बिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ, एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
4: गिफ्ट सिटी में

0: हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
2: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
3: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत सारी

0: चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी, लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे, कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया,
0: जी
1: जो आज
0: बिल्कुल
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: श्रोताओं, 90 साल हो गए, गीत, गजल, कहानियां और ढेर सारी यादें, हर जनरेशन की धड़कन, हर दिल की पहचान, आकाशवाणी आज भी उतना ही ताजा जितना पहले दिन था। आकाशवाणी 90 सालों से

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्ले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
3: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwin